0: Technici.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Milchi, murga.
2: हेलो।
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
2: हाँ।
3: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड। सर इतना गुस्सा मत होइए।
5: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: कुलदिलजीत दोसांझ एंड बादशाह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। एक बार फिर से भाई साहब, दो लेजेंड जब साथ में आते हैं ना तो मैजिक किस तरह का क्रिएट होता है, ये बात जो है हमें पता चल ही चुकी है। हैविंग सेड दैट, अगर मैजिक की मैं बात करूँ तो ये हर एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्पेल को ना हमारे ऊपर कास्ट कर सकें। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विथ यू। वेल, इस खूबसूरत सी सुबह मैं इतना आपको याद दिला दूं कि आज का जो दिन है ना, ये बड़ा ही खास, बड़ा ही स्पेशल है भाई साहब। 2 जून की रोटी खाने का वक्त आ गया। अरे 2 जून की रोटी यानी कि 2nd of June। वेल, हिंदी का ये मुहावरा 2 जून की रोटी, जहाँ पे बस कहने का मतलब ये होता है कि दो वक्त की रोटी जो है वो अच्छी तरह से, वही सही सही सलामत तरह से मिल जाए ज़िंदगी में, ये जो है ना काफ़ी सफिशिएंट है। वेल, चलिए जी, 2 जून की रोटी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से बनी रहे, अच्छी तरह से बनी रहे। एंड इसके अलावा आप एक काम करें कि जब भी घर में 2 जून की रोटी में कुछ खास बना लिया करें तो हमें बुला लिया करें। वैसे बनाने की बात करूं तो आज सूरज चाचू ने कहीं कोई कसर ना छोड़ी है हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बनाने में।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अरे और नहीं तो क्या, आपकी और हमारी जितनी अच्छी तरह से भुर्जी बना रहे हैं क्या वो कम है? वैसे अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को हम देखने की कोशिश करें सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 45, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 34। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, सनस्क्रीन हमेशा अपने साथ रखें। लेकिन इसके अलावा एक ही काम करना है, आपके कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए मेरे साथ बने रहना है, ओनली ऑन कतर्स नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future call now 3100 0813.

0: निखिल पॉल की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म बर्फी। हाय, खुशियों का आशियां जो है, बस यार जहां पर भी जाओ अपनी मौजूदगी से, अपने प्रेजेंस से बनाते चलो। क्या कहती पब्लिक?
1: मिर्ची अंशु।
0: Welcome back, you're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. देखिए, खुशियों के साथ कन्वीनियंस जो है ना आपकी जिंदगी में हर वक्त ऐड होती रहे, इसकी भरपूर कोशिश अगर कोई करती है तो वह हमारे लिए कतर में सारी की सारी मिनिस्ट्रीज एंड अथॉरिटीज। चलिए इस वक्त एक ऐसे ऐप की बात करें जो हमारी लाइफ में मल्टीपल सोल्यूशन लेकर आता है, तो उसका नाम है मेट्राश। एंड अब मेट्राश में एक और नया फीचर ऐड हो चुका है जो आपकी जिंदगी में बहुत हद तक कन्वीनियंस लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ पेइंग द फाइंस। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का फाइन लगा है, जो उम्मीद है दिल से ना लगे क्योंकि वो फाइन के बचे हुए पैसे मैं चाहूंगी आप मुझे पार्टी देने में खर्च करें, नहीं इस मुद्दे में बाद में आते हैं। अगर आपको लगता है आपने कोई वायलेशन किया है, ट्रैफिक का वायलेशन किया है, किसी तरह का फाइन इनकर हुआ है, इन दैट केस अपना या अपने किसी दोस्त यार का भी आप फाइन जो है अपने सिंपल मेट्राश एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट पे कर सकते हैं। अगर आपका है तो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। अगर आपको लगता है आपके फैमिली मेंबर्स का या किसी दोस्त यार का है तो बस फैमिली या फ्रेंड्स कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद उनके डिटेल्स आपको ऐड करने होंगे। एंड फिर क्या है, जितने भी पैसे हैं फटाफट से भर दो। मैं तो कहती हूँ नेकी कर दरिया में डाल, मतलब ये वाली जो फीलिंग है ना हमेशा अपनी जिंदगी में शामिल रखना। कभी लगे कि दोस्त यार ने कुछ गलत काम किया उसके घर पे, उसको अच्छी खासी चपत लग सकती है, अरे पॉकेट की चपत आप धीरे से पैसे लेके ले ही लेना, बाकी घर की चपत आप बेचारी की बचा ही देना, कल के दिन वो आपको भी बचा ले। क्या कहती है पब्लिक? स्टूडियो नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं भेज, बहुत गंदी बात। वेटिंग फॉर योर मैसेजेस यार। 5000 1896 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल मिर्ची मॉर्निंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
3: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

वेल भाई साहब, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, स्वीट हार्ट, देवनेगी की खूबसूरत सी आवाज़, नॉट अ लवली ट्रैक इट इज, लेकिन इस वक्त इतना बता दूं, ये बहुत खास बात है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तारीख पे तारीख, तारीख जो है आपकी जिंदगी में बेहद करीब आते जा रही है। वेल, एक ऐसे इवेंट की मैं बात करूं जिसने हमें बहुत सारी खुशियां दी। मैंने आपको सुना दिया स्वीट हार्ट, देवनेगी की खूबसूरत सी आवाज, नॉट अ लवली ट्रैक इट इज, लेकिन इस वक्त इतना बता दूं, ये बहुत खास बात है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। Welcome back, you're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you। तारीख पे तारीख, तारीख जो है आपकी

0: ऐसे इवेंट की बात करूं जिसके चलते ना ही सिर्फ खूबसूरत रिश्ते बने बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आई, तो वो है मिर्ची मॉमी अवार्ड्स। वेल, एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि इसका 5th एडिशन जो है ये बेहद करीब आ रहा है। वेकेशंस के कारण, ईद की छुट्टियों के कारण हमने डेट्स को जरा और पुश किया, एंड आपके पास अभी भी सिर्फ ये आने वाले थर्सडे तक का मौका है कि अगर आप चाहें तो मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 में पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हैं। वेल, ऑल यू नीड टू डू इज टू फटाफट से क्रिएट अ वीडियो, एक ऐसा वीडियो जो कि डिपिक्ट करेगा आपका खूबसूरत सा बॉन्ड जो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। नाउ इट कुड बी एनीथिंग, एनी आर्ट फॉर्म, इट कुड बी अ फनी वीडियो, इट कुड बी एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर इमोशन, एंड भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896, 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। एंड सबसे खास बात, अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको ऑडिशंस में 6th ऑफ फरवरी हम कौन से महीने में आ चुके हैं भाई, जून में आ चुके हैं, देख रहे हैं मेरे दिमाग में अभी भी फरवरी चल रहा है कुछ खास रीजन से, वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। राइट, यू सो 6th ऑफ जून को ऑडिशंस में आपको बुलाया जाएगा, एंड अगर आप ऑडिशंस में सेलेक्ट होते हैं उसके बाद ग्रैंड फिनाले में ना ही सिर्फ आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा बल्कि बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी आप जीत पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑल द मॉमीज, वी ईगरली लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग योर एंट्रीज एंड यू winning that crown, walking on that red carpet and creating some beautiful memories together. See you soon. Meanwhile, Mirchi Mommy Awards kya hai pata chal jaye.
1: Ghar de kam na rukkan ge oh jim vich phatte chakkange.
2: You better watch her shine.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

0: रात की खूबसूरत सी आवाज श्रेया घोषाल का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया। हैविंग सेड दैट, ये भी बता दूं मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 7:09।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यार एक बात कहूं, काउंटडाउन जो है ना फिर से शुरू हो ही चुका है।
2: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Countdown की अगर बात करूं तो एक ऐसे विन की, एक ऐसे टूर्नामेंट की जिसने पूरी दुनिया में बोलबाला अपना हर जगह मचा के रखा हुआ है, लेकिन इसका सबसे खूबसूरत पहलू अगर कहीं देखने को मिला था तो वो था साल 2022 और वो है देश खतर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फीफा वर्ल्ड कप। तो जब जब ये नाम आता है यादें अगर सीधा कहीं जाती हैं तो 4 साल पीछे। हैविंग सेड दैट, एक बार फिर से हमारी पूरी की पूरी पलटन जो है कमाल धमाल मचाने के लिए अगर कहीं पहुंच चुकी है तो वो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की दुनिया में, जो कि ऑफिशियली ओपन होगा 11 जून को। ये बात तो आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है ये 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करें और ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। एंड सबसे खास बात अगर पहले मैच की बात करें तो मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका जो कि खेला जाएगा द आइकॉनिक मेक्सिको सिटी स्टेडियम। लेकिन भाई अगर अपने देश को देखने की कोशिश करें, कतर की बात करें तो मरूनस भी पूरी तैयारी के साथ अब पहुंच चुके हैं। कतर का पहला मैच होगा 13 जून को अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। एंड बात इतनी है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में जब पूरी की कतरी पलटन धूम धड़ाके के साथ शोर शराबे के साथ वहां पर मौजूद होगी तो आप समझ सकते हैं कि नजारा खूबसूरत होगा। तो कितना खूबसूरत होगा, 48 टीम्स, 104 मैचेस, एक महीने से ज्यादा चलने वाला ये फुटबॉल का महा टूर्नामेंट। वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। सारे अपडेट्स जो है हम आप तक बिल्कुल पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त साथ में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी अगर मैं फीफा वर्ल्ड कप कतार की बात करूं तो यार आपके लिए इस टूर्नामेंट का सबसे खूबसूरत लम्हा या मोमेंट कौन सा रहा? मेरे लिए आई वॉज रियली फॉर्चुनेट एंड लकी दैट आई वॉज दी एमसी फॉर दिस इवेंट एंड आई वॉज प्रिवलेज टू बी अ पार्ट ऑफ नियरली 22 मैचेस अक्रॉस 7 डिफरेंट स्टेडियम्स। ये एक ऐसी मेमरी है, ये एक ऐसी याद है जो मेरे जहन में कुछ इस तरह से समाई हुई है ना कि यार इससे ज़्यादा खूबसूरत इन टर्म्स ऑफ माई एमसींग एक्सपीरियंसिस एंड करियर सो फार आई गेस कुछ और नहीं हो सकता। चलिए जी बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। मीनवाइल मिर्ची मॉर्निंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहले आ रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
3: मैं कहाँ पर हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश नहीं आ रहा, एक तो परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो भी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: सुनिधि चौहान एंड दिव्य कुमार की खूबसूरत सी आवाज यानी पावर पैक ट्रैक इस वक्त आपने और हमने सुन लिया, लेकिन ये सुपर पावर पैक्ड बात भी सुन ले।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से एक जेंटल रिमाइंडर लेकर आपके बीच पहुंच ही चुकी हूँ। देखिए, मौका भी है, दस्तूर भी, और ये दोनों आपके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से ये बात याद दिला ही दी जाए। Having said that, इस वक्त अगर ग्रैंड फिनाले की बात करें और उसके पहले ऑडिशंस की बात करें, तो ये दोनों के दोनों मेन इवेंट जो है ना बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। It is going to be 6th of June, जब ऑडिशंस जो है वो होस्ट किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे, एंड उसके बाद टॉप 15 मम्मीज अगर कहीं पहुंचेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी इन द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस 5th एडिशन ऑफ मैग्नानिमस इवेंट मिर्ची मॉमी अवार्ड्स। देखिए यार, वक्त जो है काफी कम है, एंड सिंस ये एडिशन जो है 5th एडिशन है, तो प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। तो ना ही सिर्फ वो क्राउन एंड रेड कार्पेट, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग प्राइसेस विद अमेजिंग मेमोरीज कर रहे हैं आपका इंतजार। मॉमीज, अगर अभी भी लगता है कि भैया मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के 5th एडिशन में पार्टिसिपेट करना है, तो काम जो है बड़ा आसान है। फटाफट से आपको अपना एक वीडियो बनाना है, यू नो, अप टू 1 मिनट, अपने बच्चे के साथ यार किसी भी इमोशन को डिपिक्ट करते हुए। बस वो वीडियो में आपके और आपके बच्चे का बॉन्ड जो है बहुत अच्छी तरह से नजर आना चाहिए। हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896 5000 1896। एंड इसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ऑडिशन के लिए बुलाए जाएंगे, एंड ऑडिशन के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ग्रैंड फिनाले में हमारे ऑन ग्राउंड इवेंट में आप जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। मिर्ची की टीम के अलावा बहुत सारे लोगों के साथ फन फिल्ड एक शाम बिताने का मौका मिलेगा, एंड बहुत सारी अमेजिंग मेमोरीज क्रिएट करने का भी मौका मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से अपनी एंट्रीज भेजिए। वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल। मीनवाइल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Mirchi Mornings. Brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Kuch kuch hota hai Anjali. Tum nahi samjhoge.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा.
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: And we let the music play. Well, what a power pack track it is. यार पता है ये गाना जो है ना मैं अक्सर जिम में प्ले किया करती हूँ. मतलब वो मोटिवेशन लेवल जो है मेरा दुगना हो जाता है. आपके साथ ऐसा कुछ होता है? कुछ गाने जो आपकी लाइफ में आपको इंस्पायर करते हैं?
1: मिर्ची अंशु
0: देखिए इस वक्त बात इतनी है कि गाने इंस्पायर करें ना करें, लेकिन अब जो बात मैं आपको सुनाने वाली हूँ, आई एम प्रीटी श्योर जिंदगी में ये आपको 101% इंस्पायर करेगी. यार बॉलीवुड फिल्मों की सबसे खास बात क्या है पता है? ये ना हमारी लाइफ में बहुत सारे रंग लेकर आते हैं. कई फिल्में जो है हमें इमोशन से भर देती हैं, तो कई फिल्में ऐसी होती हैं जो लाइफ में हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देती हैं. कुछ फिल्में हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं, तो कुछ फिल्में जब हम कभी लो महसूस करें तो हमें अपलिफ्ट करना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं. एंड ये एक फिल्म ऐसी जरूर है. अब ये कौन सी है? सारी बातें मैं बता दूं तो आप क्या करेंगे यार? बस फटाफट से अब आपके बीच पेश करने वाली हूं मैं एक डायलॉग. बड़ा ही दमदार पावर पैक डायलॉग है. आपको ध्यान से सुनना है, उसे अपनी जिंदगी में अपनाना भी है. एंड इसके अलावा साथ मुझे ये बताना है कि ये है तो है किस फिल्म से. बॉलीवुड लवर फिल्में पसंद है तो ये पहचानना लाजमी है. एंड एक बार आपने पहचान लिया तो करेक्ट आंसर बस भेज दीजिएगा. लेकिन कहां? 5000 1896 5000 1896. वी विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु. सो हियर वी गो.
2: 70 मिनट है तुम्हारे पास. शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट. आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे. तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा. बस इतना कहूंगा, जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, हर उस इंसान से जिसने तुम्हें तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट.
0: वेल आपके पास 70 मिनट ना सही है, लेकिन हाँ 70 सेकंड जरूर हैं इस डायलॉग को पहचानने के लिए कि है तो है किस फिल्म से. एंड साथ ही इतनी दमदार डिलीवरी की है तो किस एक्टर ने की है. यार इन्हें ना पहचाना तो क्या ही जाना मेरी जान. 5000 1896 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल राघव चैतन्या की आवाज़ एंड ये अगला प्यारा सा गाना आपके रास्ते. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Well, जावेद अली की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, लेकिन सच कहूं भाई इस गाने में मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट को ये लगता है ना, तो वो हर थोड़ी देर में जो होए आता है, मतलब ऐसा लगता है कि भैया तुम आगे बढ़ते जाओ, बैकग्राउंड में तुम्हारे सारे के सारे दोस्त जो है ना तुम्हारी दिल की जर्नी में 101% तुम्हारे साथ है। मिर्ची अंशु ना, मुझे अपने कॉलेज की एक बात याद आती है ना, हमारे ना कॉलेज में जो लड़के थे क्लास में, बड़े शरारती हुआ करते थे, बदमाश नहीं शरारती। तो मुझे याद है अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं ना, उसके दिल का हाल बने या ना बने, उसके हौसले को अफजाई करने के लिए वो अक्सर एक डायलॉग कहा करते थे, भैया तुम संघर्ष करो, भाभी मिले ना मिले हम तुम्हारे साथ हैं। That used to be so funny. यार वो दिन जो है ना हमारी जिंदगी के बड़े अलग दिन थे यार, स्कूल एंड कॉलेज का टाइम, बोले तो क्या ही बोले। चलिए जी, लेकिन अभी एक काम जरूर कर लेते हैं, अब से कुछ देर पहले आपके बीच मैंने एक बहुत ही पावरफुल सा डायलॉग पेश किया था, आपको सुनकर दो काम करना था, आइडेंटिफाई करना था दोनों ही चीजों को कि किस फिल्म से है, साथ ही किस एक्टर पर पिक्चराइज्ड है। फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से मैं ये डायलॉग फिर से सुनाती हूँ, अगर आपको लगे अभी भी सुनने सुनने आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो फटाफट से मुझे भेज दीजिएगा सही जवाब 5000186 पर, 5000186 एंड हियर वी गो।
1: 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, हर उस इंसान से जिसने तुम्हें तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट जी।
0: हाय यार क्या पावर पैक डालोगे यार। चले लोगों ने क्या कहा बता दूं।
2: हाय आंसू, दिस इज कृष्ण बहादुर, द मूवी नेम इज चक दे इंडिया शाहरुख खान,
3: मूवी नेम इज चक दे इंडिया बिबू यार।
4: हेलो माय नेम इज आइलिन एंड चक दे इंडिया।
5: हाय अंशु गुड मॉर्निंग, सुनील बोल रहा हूँ, ये मूवी है चक दे इंडिया, डायलॉग है शाहरुख खान का, थैंक यू मिर्ची इज हॉट।
6: गुड मॉर्निंग अंशु, इट्स फ्रॉम चक दे, नमिता हियर, थैंक यू।
7: हाय गुड मॉर्निंग अंशु, मेरा नाम देवा है, आपने अभी जो डायलॉग सुनाया था वो चक दे इंडिया मूवी से है, शाहरुख खान ने बोला था, थैंक यू।
8: गुड मॉर्निंग, दिस इज मोहम्मद अख्तर, द नेम ऑफ द मूवी इज चक दे इंडिया, वन ऑफ माय बेस्ट मूवी एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय शाहरुख खान, एंड द मूवी वाज प्रोड्यूस्ड अंडर द बैनर ऑफ यशराज मूवीज, थैंक यू, एंड इट रिप्रेजेंट आवर नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी।
0: आप सबने जो कहा ये पूरी तरह से सही, इनफैक्ट जितने लोगों ने लिख कर भी जवाब दिया बहुत सारे रिप्लाईज आए हैं, यूसुफ भाई, प्रमोद, अश्विन ठाकुर, मोहम्मद, दीप्ति एंड ऑल दोस पीपल हु रिस्पोंडेड, थैंक यू सो मच, सबसे पहले आपके लिए तालियां हो जाए। देखिए आज जो है ना हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसने ना ही सिर्फ बॉक्स ऑफिस में बहुत ही ज्यादा कमाल किया, लेकिन करोड़ों दिलों में, कहना चाहिए सही मायने में, हर एक गोल को ना बस दाग भी दिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चक दे इंडिया। साल 2007 में रिलीज हुई यह शानदार स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी जिसे डायरेक्ट किया शमित अमीन ने एंड प्रोड्यूस किया था यश राज फिल्म्स ने एंड कहानी लिखी थी जयदीप साहनी ने। फिल्म में शाहरुख खान ने कबीर खान का किरदार निभाया जो आज भी इंडियन सिनेमा में सबसे इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में चुनी गई ज्यादातर लड़कियां जो हैं वो प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड से आई थी ताकि टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा असली लग सके। यार एक फैक्ट मैं इस वक्त आपके बीच पेश करना चाहूंगी, आप में से किसी ने मेंशन किया, इनफैक्ट कईयों को ये लगता है कि अगर हम इंडिया के नेशनल स्पोर्ट की बात करें, राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है, लेकिन ये बात जो है ये गलत है। हाँ जी, भारत का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है, तो फिर हमें लगता क्यों है कि भारत का नेशनल स्पोर्ट जो है ये हॉकी है। बात इतनी है कि 1928 से 1956 के बीच इंडियन हॉकी ने एक ऐसा गोल्डन, कहना चाहिए एरा हमारे बीच लेकर आई कि दुनिया में कोई भी टीम जो है इंडियन टीम के सामने टिकी नहीं पाती थी। भारत ने लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते एंड आज तक भारतीय हॉकी टीम ने कुल मिलाकर 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके। भैया इतना गजब परफॉर्मेंस के बाद मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों की वजह से हॉकी जो है भारत की पहचान बन गई और हम सबको ये लगने लगा कि भारत का अगर नेशनल स्पोर्ट कोई है तो वो है हॉकी। लेकिन दरअसल भारत आधिकारिक तौर पर किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल के तौर पर प्रमोट नहीं करता, क्योंकि उनका यही मानना है कि हर एक खेल को समान अधिकार भारत में दिया जा सके। तो बस ये एक फैक्ट जो है इस फिल्म के जरिए मैंने आपके बीच पेश कर ही दिया। एक बात याद रखना, 70 मिनट हो या 70 सेकंड, जिंदगी में जो काम करो ना बॉस, दिल से दिल लगाकर करना, जीत जो है घुटने टेकते खुद तुम्हारे आगे आएगी। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु एंड मिर्ची मॉर्निंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय
9: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: क्यों ना इस फिल्म से ये पावर पैक गाना हम सबके हौसले को और भी ज्यादा अफजाई करने के लिए हो जाए। हेमा सरदेसाई की आवाज एंड अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?

0: सिर्फ बॉबी को ही नहीं पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज अ चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अर्ज किया है
3: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट UAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फट्टे चकांगे.
2: यू बेटर वॉच हर शाइन.
1: टारगेट पूरे करणगे हुण बदले रूल जमाने दे.
2: यू बेटर वॉच हर शाइन.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा, download कीजिए आज ही iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: शाश्वत सचदेव की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ टेरिफिक ट्रैक इट इज. भाई साहब जान में गुजरा ऐसा बार बार ना क्या करूं जी. हैविंग सेड दैट मिर्ची गड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8:04.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे अगर कुछ करना ही है तो क्यों ना इस वक्त ये काम कर ले.
2: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से आप सभी का दिल वाला स्वागत. वेल, अगर आज की तारीख को देखने की कोशिश करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा खास एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. वेल, फाइनली हम पहुँच चुके हैं 2 जून पर. बस वो तारीख जहाँ पे 2 जून की रोटी खाई जाती है. 2 जून की रोटी, ये मुहावरा बचपन के दिनों में कहीं ना कहीं हिंदी की किताब में ज़रूर पढ़ा होगा. 2 जून की रोटी का मतलब होता है 2 वक्त की रोटी. कहते हैं ना, इंसान इवेंचुअली आफ्टर ऑल जो कुछ भी करता है, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी मुकाम में क्यों ना पहुंच चुका हो, उसका प्राइम रीज़न ये होता है कि भाई 2 जून की रोटी जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए, 2 वक्त की रोटी जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए. लेकिन यार, इस बात पर ना मैं एक और बात आज ऐड करना चाहूँगी. वो हम कहते हैं ना अक्सर, खुद के लिए तो हर कोई जीता है, औरों के लिए जी तो कोई बात है. तो जहाँ पर ज़िंदगी में आप जो कुछ भी करते हैं इसलिए ज़रूर करते हैं कि आप अच्छे से रह सकें, आपका परिवार खुशहाल तौर से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सके, चलते फिरते ही सही. अगर कोई लगे कि ज़रूरतमंद आपने देखा है एंड अगर आपको लगता है कि आपके छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन से उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है, तो यार ऐसा कुछ करने में कभी पीछे हाथ ना हटाएं. किसी की ज़िंदगी में वो 2 जून की रोटी ही ले आए, 2 वक्त की रोटी ही ले आए, क्या पता यार आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी में बड़ी सी खुशी ला सकती है. ऑलराइट, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. इट्स हॉट एंड मिर्ची मॉर्निंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: David Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Kabana. Burka, burka. La pipa, la burka. Milchi, burka.
2: हेलो
3: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
3: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
3: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
3: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
3: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
3: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
3: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
3: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
3: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
3: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था, उसे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
3: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
3: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
3: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले
3: थी। मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पगला
5: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: तो बस डुबकी लगाने की तैयारी शुरू कर ही लें।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो गर्मी अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और इसके साथ कतर का मरीन सीजन भी फुल स्विंग में वापस आ चुका है और अब बीचेस पर फिर से सब कुछ लाइवली होने वाला है। डाइवर्स आर रेडी, स्विमर्स आर रेडी और हम जैसे लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं जो शाम को समंदर के पास बैठ कर बस हवा को फील करना चाहते हैं। वैसे एक बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि कतर के समंदर में सिर्फ फिश और कोरल ही नहीं, यहाँ कुछ अंडर वाटर स्पॉट्स पर ओल्ड पर्ल डाइविंग रूट्स के ट्रेसेस आज भी पाए जाते हैं। देखो यार, ऑयल एंड स्काईस्केपर्स के पहले कतर की इकोनॉमी पर्ल्स पर चलती थी। डाइवर्स घंटों तक समंदर में जाकर मोती ढूंढा करते थे एंड आज भी कोई ना कोई उसका ट्रेस उपलब्ध है, यानी कि मौजूद है। सो टेक्निकली कतर का समंदर सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि हिस्ट्री को भी छुपाए बैठा है। भाई, समंदर की लहरें भी क्या कमाल करती हैं, किनारों से टकरा कर भी सफर जारी रखती हैं। शायद जिंदगी भी कुछ इनके जैसी ही लगती है, हर दफा रुक कर भी हिम्मत से आगे बढ़ती। वेल, मरीन सीजन को एंजॉय करिए बट रिस्पॉन्सिबली। हाइड्रेशन, सेफ्टी चेक्स, प्रॉपर गाइडेंस स्पेशली ड्यूरिंग डाइविंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ एक्साइटिंग सफर पे निकले तो मुझे साथ लेके जाना, मजा आए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: रिजल सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, ये प्यारा सा गाना तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक खास बात है जो इस वक्त मैं आपसे कर लूं।
1: मिर्ची अंशु
0: वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग, एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर मैं आ चुकी हूँ। यार पता है क्या, आज सुबह सुबह ना मेरे दिल में एक ख्याल आया, यू नो कोई तो थॉट है जो आज सुबह सुबह बस मेरे दिल में चल रहा था, कि अक्सर जिंदगी में ये होता है कि हम कई दफ़ा ये सोचने लगते हैं कि हमने जो चाहा वो हमें मिला तो मिला क्यों नहीं, हमने जो कोशिश की वो पूरी हुई तो हुई क्यों नहीं। लेकिन बात इतनी है यार, ज़िंदगी में ना अगर कुछ भी हासिल करना है, किसी मुकाम तक पहुंचना है, तो एक बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ईमानदारी से की गई कोशिश, दिल में कंटिन्यूड रखी गई वो उम्मीद एंड ऊपर वाले पे वो भरोसा। जब ये तीन चीज़ें हमारे साथ मिलती है ना, तो दुनिया की ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम ना पा सकें। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो बस अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाओ, उस पर भरोसा रखते जाओ। मुझे पता नहीं कि शायद ये आपके लिए आज इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, आपकी ज़िंदगी में लागू होता है या नहीं, लेकिन कभी मन में ख्याल आए तो ये बात ज़रूर याद रखना, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। एंड बस दिल में अगर चाह है तो पूरी कायनात तुम्हारी कोशिश में शामिल होगी और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने में पूरी तरह से लग जाएगी। स्टूडियो टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Hum bhi wo hain jo kabhi kisi ke peeche nahi khade hote. Jahan khade ho jate hain, line wahin se shuru hoti hai.
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
3: हियर वी गो अगेन. ऑथेंटिक ओरिजिनल एंड बेटर देन आवर राइट.

Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aaj Anshu with you. Well, इस वक्त अगर बहाने की हम बात करें तो देखो कहीं बहाना करते करते मौका दस्तूर दोनों ही आपके हाथ से निकल ही ना जाए. Well, अगर मैं कतर के एक ऐसे इवेंट की बात करूँ जिसका इंतजार मिर्ची के हर एक फैन हर एक लिसनर को होता है तो उसका नाम है मिर्ची मॉमी अवार्ड्स. एंड सबसे खास बात यह है इस बार का फिफ्थ एडिशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड तगड़ा होने वाला है. तो देखिए बात इतनी अगर आपको लगता है मॉमीज अभी भी आपको मिर्ची मॉमी अवार्ड्स की सीजन 5 में पार्टिसिपेट करना है तो ये है आपके पास आखिरी मौका. बिकॉज फाइनली थर्सडे को हम एंट्रीज एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे एंड उसके बाद फ्राइडे को होने वाला है हमारा ऑडिशन राउंड. सो इफ यू थिंक दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैग्नानिमस इवेंट एंड क्रिएट सम अमेजिंग मेमोरीज टुगेदर विद मिर्ची अलोंग साइड विनिंग सम एक्साइटिंग प्राइजेस, सो ऑल यू नीड टू डू इज टू शेयर अ वीडियो ऑफ योर्स अलोंग विद योर चाइल्ड डिपिक्टिंग द ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट यू शेयर. अपना एक प्यारा सा वीडियो बनाइए एक मिनट तक का. इट कुड बी अ फनी वीडियो, इट कुड बी एनी इमोशनल वन, इट कुड बी अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, व्हाटएवर यू हैव, एंड भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दैट इज 5000 1896. एंड अगर आप एक्सेप्ट हुए तो आपको ऑडिशंस पे बुलाया जाएगा एंड ऑडिशंस के बाद आपको मिलेगा मौका कि आप ग्रैंड फिनाले का ना ही सिर्फ हिस्सा बन सके लेकिन इस ताज को अपने सर पे सजाने का एक मौका भी हथिया सके. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से एंट्रीज भेजिए. मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज शिल्पा राव का साथ अगला गाना एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
6: Aray, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: यार ये बात तो तय है कि अपनी जिंदगी में एक ना एक बार मुझे अपने दोस्तों के साथ वो स्पेन रोड ट्रिप में जरूर जाना है।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। ये बात आप भी अग्री करेंगे कि पिक्चरों ने, फिल्मों ने हमारी जिंदगी में क्या गजब कमाल का रोल निभाया है। कई फिल्मों ने हमें रुलाया, कईयों ने हमें हंसाया, कईयों ने मोहब्बत करना सिखाया, तो कईयों ने टूटे हुए दिल को फिर से कैसे जोड़ते हैं ये बात सिखाई, कईयों ने हमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन से पूरी तरह से भर दिया, तो कईयों ने रिश्तों की इज्जत करना सिखाई। या लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसने सही मायने में मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, तो वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए इस फिल्म की डिटेल्स तो आप में से कईयों को बताऊंगी, लेकिन इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूं। आपको वो याद है स्पेन रोड ट्रिप, वो दोस्ती, वो लाइफ लेसन, स्काई डाइविंग, टोमैटिना, एवरीथिंग। आपको मालूम है इस फिल्म के रिलीज के बाद टूरिज्म जो है इंडिया से स्पेन के लिए कुछ इस तरह से बढ़ा कि स्पेन टूरिज्म बोर्ड ने एक्चुअली इस बात को एक्नॉलेज किया कि इस फिल्म के इम्पैक्ट की वजह से इंडियन सब ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के लिए स्पेन आने लगे। इमेजिन, अ बॉलीवुड फिल्म लिटरली चेंज ट्रैवल ट्रेंड्स। Now people suddenly wanted road trips, adventure sports, bachelor trips, solo traveling. तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये एक फिल्म नहीं थी भाई, इसने एक entire generation का पूरा mindset बदल दिया। अब देखिए, इसके पहले हमारे लिए सक्सेस का मतलब होता था जॉब एंड स्टेबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद लोगों ने एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करना शुरू किया। और वैसे यही एक्सपीरियंस हुआ था दिल चाहता है के बाद, जब लोगों ने गोवा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखना शुरू किया। आप मुझे बताएं कौन सी फिल्म ने आपको हाईली इन्फ्लुएंस किया। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Milchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vida para la burga.
2: Milchi, burga.
3: हेलो
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
5: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
5: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
5: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
5: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दी जाए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
5: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
5: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
5: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
5: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
5: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: सर
6: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
3: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
6: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
9: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
8: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
10: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
8: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: अच्छा सुनो, बचपन के दिनों में कभी जानबूझकर घूमने की कोशिश की है?
1: मिर्ची अंशु
0: यार, हमने ना ऐसी हरकत की है, बड़ा मजा आता है. वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. यार, इस वक्त अगर अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं तो सीधा अगर कोई एक्सपीरियंस याद आता है तो वो है नानी का घर. गर्मी का दिन जहां मामा के बच्चे, मासी के बच्चे, हम सब एक साथ मिलकर क्या खुरापाती हरकतें किया करते थे. हम सब की उम्र जो है ना, ऑलमोस्ट सेम हम उम्र. अब ऐसी टोली जब घर के बड़ों के साथ कहीं बाहर निकल जाए तो कुछ खास प्लानिंग ना हो तो फिर क्या ही हो. एंड हमारा प्लान जो है ना, बड़ा कमाल होता था कि भाई हर किसी ने अलग अलग जगह जाके घूम जाना है, स्पेशली अगर हम किसी फेयर में. अब ऐसा क्यों, हम जो है किसी दुकान में जाते थे, जोर जोर से रोने लगते थे कि हमारे मम्मी पापा जो है ना गुम गए. अब दुकान वाले भैया इतने उदार होते थे, ना ही सिर्फ हमें प्यार से बिठाते थे, पानी पिलाते थे, बल्कि अगर कुछ दुकान में अच्छे टॉयज हैं तो हमें फ्री में दिया करते थे. कुछ अच्छा खाने पीने का सामान है वो भी मुफ्त में मिलता था. एंड हाँ, इसके चलते हमारी लॉटरी एंड पार्टी जो है ना वो बस हो ही जाती थी. लेकिन ना यार, कतर के बच्चों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कतर ने इस वक्त लॉन्च किया है किड्स गो कैंपेन, जिसके चलते 12 साल से कम उम्र के बच्चे कतर में हो रहे बहुत सारे एक्टिवेशंस को समर्स के दौरान ना ही सिर्फ मुफ्त में एंजॉय कर पाएंगे, इनफैक्ट अगर डाइनिंग की बात करें, एक्सपीरियंसेस की बात करें तो उनका मजा भी उठा पाएंगे. लेकिन हाँ, माँ बाप को अपनी टिकट खरीदनी होगी. ऐसा नहीं बच्चों के साथ हम भी मुफ्त थोड़ा तो पैसा खर्च करो, जेब ढीली करो. किड्स गो कैंपेन के सारे डिटेल्स जानने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करते रहिए एंड बस सुनते रहिए कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट बंदी का नाम अंशु. Enjoy.
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

water shine. Target pure kar.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mere bete aayenge. Mere Karan Arjun aayenge.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: दिलजीत दोसांझ की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म मनमर्जियां, ये तो मैंने आपको सुना दिया। साथ ही ये बता दूं मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9:37।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: भाई साहब कोहराम है, सॉलिड कोहराम, एक बार फिर से उछल कूद जो है पूरी तरह से मची हुई है। बस इस उछल कूद की अगर मैं बात करूं तो इतना समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट्स की दुनिया में एक बार फिर से कोई तो तूफान आया है, कोई तो अच्छे रंग हमारी जिंदगी में फिर से शामिल हुए हैं। तो अकाउंट में अगर पैसे हैं तो फटाफट से उन्हें भेजने की तैयारी आज आप जरूर कर सकते हैं। आईपी मनी में आज अच्छे एक्सचेंज रेट का बोलबाला जरूर है। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.05। कल से हुई है यहां बढ़ोतरी। साथ ही पाकिस्तानी रुपीज को हम देखने की कोशिश करें तो 76.81। द प्राइस रिमेंस द सेम एज पर यस्टरडे। बांग्लादेश टका की मैं बात करूं तो इट इज 33.68, बिल्कुल कल की तरह। लेकिन अगर नेपाली रुपीस को देखने की कोशिश करें तो इट इज 41.59। एंड अगर श्रीलंकन रुपीस की बात करूं तो भैया उछाल मारते हुए ये पहुंच चुका है 90.82 पर। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल एंजॉय।

0: Well, Vishal Dadlani ki power pack awaaz and what a terrific track it is from the film Baji Rao Mastani. Bhai sahab, jab jab ye gaana sunti hu na, kahin na kahin wo signature step jo hai mere dimag mein, zehen mein aa hi jata hai.
1: Mirchi Anshu.
0: Welcome back, you're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. क्या आपकी जिंदगी भी कुछ इस तरह है कि जब भी आप कोई धुन सुनते हैं, आपको ये गाना सुनते हैं, या अगर उसमें कोई सिग्नेचर स्टेप होता है तो कहीं ना कहीं खुद से आप उसको इमिजिएटली रिलेट करने लगते हैं कि हाँ यार, इस गाने का ये सिग्नेचर स्टेप हुआ करता था. एंड भले आप फिजिकली उसे परफॉर्म ना करें, लेकिन आपके जहन में, आपके दिमाग में वो स्टेप चलने लगता है. वैसे एक बात कहूँ यार, हमारी जिंदगी जो है ना, ये किसी गाने से कम नहीं, और ये गाना खुद हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस का गाना है. और हर किसी के गाने में कोई ना कोई सिग्नेचर स्टेप होता है, एक ऐसा स्टेप जो कि उसका अपना होता है. अब बात तो ये है ना कि हम अपने उस सिग्नेचर स्टेप को कितना अच्छा बनाते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है. भाई, अपने जिंदगी के गाने और उसके हर एक स्टेप को इतना कमाल बनाओ कि आपको किसी और की नहीं, औरों को आपके स्टेप से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले. लेकिन कहते हैं ना, डांस की यही तो खासियत है, जहां पे हम किसी और को कुछ सिखा पाते हैं, कहीं ना कहीं किसी और से हम भी कुछ सीख पाते हैं. तो अगर लगे कि किसी और का स्टेप भी काफी कमाल है, तो जिंदगी नामक गाने में उसे अपनी लाइफ में शामिल करने की कोशिश जरूर करें. इवेंचुअली लाइफ का एक ही पर्पस है, कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना. बस यार, चलती का नाम गाड़ी है, जिस दिन ये गाड़ी रुक गई उस दिन जिंदगी जिंदगी कहाँ रही. तो बस आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, और इसके साथ ही अंशु के साथ बने रहना है ओनली ऑन कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट. मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ. मीनवाइल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. मस्सलाम हबीबी.

0: હોલીવુડ બોલીવુડ બોલડા
1: ઓન્લી ઓન મિર્ચી ઇટ્સ હોટ.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है. और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे.
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है.
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: एकदम सही सुना तुमने. किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन. कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो.
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ. बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर.
7: दवे
8: दवे कौन?
7: The way you love me, I हाय मर जावा.
8: खटखट, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन।

0: highest remittance rate in Qatar. Let's do that.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बिटी उंडन हो आप और एक सच्चा फिल्मची अभी थोड़ा सा तो ऑफेंड हो ही गया होगा कि ये क्या बोल रही है श्रुति यार, मतलब अब हम हॉलीवुड से सीखेंगे। हाँ भाई सीखना पड़ेगा, सिर्फ कंटेंट वाइज ही नहीं बट एक्चुअली प्रोफेशनैलिटी वाइज भी हमें सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस तरीके से रणवीर सिंह का डॉन 3 फॉलआउट चल रहा है, जिसके बाद से इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ, उनको बॉयकॉट करने की बात हो गई एंड वॉट नॉट, तो उससे ना मेरे दिमाग में आता है कि इट्स हाई टाइम कि बॉलीवुड हॉलीवुड के जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआत करे। मतलब ये जो होता है ना कि अच्छा ये एक्टर है हमें इसको अपनी अगली फिल्म में लेना है एंड बस वो हैंडशेक वाली डील हो जाती है दो लोगों के बीच में, उसके बाद फिर कोई बात पलटी भी तो आप कोई मेजर एक्शन नहीं ले सकते हैं किसी के खिलाफ। सो दैट इज द रीजन आई थिंक आई बिलीव दैट ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाली चीज है कि भाई अगर आपको मेरे इस फिल्म में काम करना है तो लेट्स साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होना हमारी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज वाई आई सेड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iscaba la buscaba la sacaba la Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirci, murga.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टर्बेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टर्बेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टर्बेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
3: हैं मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टर्बेंस आ रही है। दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब?
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने मैचबॉक्स शॉर्ट्स के अंदर जर्नलिस्ट लीना धानकर की बुक द गुरुग्राम स्कूल मर्डर के स्क्रीन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। सो बेसिकली द इंसिडेंट हैपेंड इन 2017, जहां 7 साल का एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था एट अ स्कूल। बस इस चीज को लेके मेरे 2 सेंट्स हैं। पहली चीज ये कि डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बननी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इन द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम मामले की वल्नरेबिलिटी, इसकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भाई, इस फिल्म के टीजर नहीं, स्क्रीमर्स रिलीज होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3 एकोज ऑफ द पास्ट की, जिसके मेकर्स ने इसके प्रमोशन को लेके एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड कि इस मूवी के बाइट साइज्ड हॉरर प्रोमोज रिलीज किए जाएंगे टिल इट्स रिलीज, विच इज हैपनिंग ऑन द 12th of June इन थिएटर्स। आमिर खान के सितारे जमीन पर अगर आपने मिस कर दिया था इन थिएटर्स या OTT, देन ब्रो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फाइनली ये मूवी TV पे प्रीमियर होने वाली है एंड द चैनल इज गोना बी सोनी मैक्स और डेट है 31st of May, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: भाई जिंदगी ने तो बहुत गेम खेल लिए, अब थोड़ा आप मेरे साथ गेम खेलिए यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं हर रोज ढूंढ रही हूँ मिर्ची फिल्मची। बेसिकली इस कॉन्टेस्ट के जरिए मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालना चाहती हूँ। तो करना कुछ खास नहीं है, आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति पे जाना है, मेरे DMs में स्लाइड करके अपना फोन नंबर मुझे भेजना है और फिर मैं आपको करूंगी कॉल और आपके साथ खेलूंगी ये बॉलीवुड गेम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। हमारे साथ कौन है टेलीफोन लाइन पे?
3: अनुष्का।
0: हाय अनुष्का, कैसे हो आप?
3: मैं ठीक, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक और बढ़िया हो जाऊंगी इफ यू विल प्ले दिस गेम विद मी।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड का खिलाड़ी किसको बोलते हैं?
3: अक्षय कुमार।
0: ग्रेट। अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो
3: चोरी करते हैं।
0: हाँ चोरी करते हैं।
3: 30 मार खान।
0: 30 मार खान की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: कैटरीना कैफ।
0: कैटरीना कैफ की पहली फिल्म? सोचो।
3: बूम बूम बूम।
0: क्या बात है, ये कहीं से किसी ने प्रॉम्प्ट किया है क्या आपको? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बूम के मेल लीड एक्टर का नाम क्या है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: क्या बात है, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो अपने बेटे के साथ नजर आए थे?
3: बंटी और बबली
0: में लीड एक्ट्रेस कौन है?
3: ऐश्वर्या
0: है। नहीं, बट आपने इतना जो गेम खेला है मेरे साथ उसके मद्देनजर मैं आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो अनुष्का ने ये गेम जहाँ छोड़ा है उसके आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लाइक आई सेड मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति, मेरे DMs में जाके अपना फोन नंबर मुझे भेजिए एंड आई गिव यू अ कॉल एंड आगे का गेम आपके साथ करूंगी कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
4: खट खट,
5: कौन है?
4: इशांत।
5: इशांत कौन?
4: इशांत गदाधारी भीम, इशांत।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi,
6: it's hot.

0: लाइफ के बोरिंग गेम्स खेल खेल के परेशान हो गए हो तो जरा आओ मेरे साथ गेम खेलो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची ढूंढ रही हूँ यार। बेसिकली इस गेम सेक्शन के जरिए मैं आपसे बोलती हूँ अपना नंबर देने के लिए थ्रू माई इंस्टाग्राम, और फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद फिर ये गेम का सिलसिला चालू होता है जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालती हूँ यार। सो अभी कुछ देर पहले अनुष्का ने मुझे कॉल किया था, उनसे जो भी सिलसिला चला उसमें ब्रेक लग गया बीच में। अब उस पॉइंट से देयर इज दिस अनदर पर्सन विक्रांत जो मेरे साथ ये गेम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं सर?
3: यस प्लीज।
0: सो वी एंडेड एट बंटी और बबली में लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: रानी मुखर्जी।
0: क्या बात है, रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें उनका नाम टीना था।
3: कुछ होता है।
0: ऑसम। कुछ कुछ होता है कि लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनका डायलॉग है किरण।
3: डर।
0: डर की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: जूही चावला।
0: जूही चावला की एक फिल्म जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई है।
3: अक्षय कुमार के साथ नजर आई है?
0: हाँ जी।
3: ओ गॉड, दिस इज समथिंग खिलाड़ी।
0: यू आर गोइंग देयर।
3: मिसेस खिलाड़ी।
0: ऑसम। ऑसम। ऑसम। तो भाई विक्रांत जी ने तो इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया है, तो इसी के साथ आपको भी ये टैग देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो इसी के साथ एक बार फिर से कल मिर्ची फिल्मची की खोज जारी रहेगी, बट अभी के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: छोटी छोटी चीजें भी काफी बड़ा मजा दे जाती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओ हेलो बाबू मोशाय, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ। लेट मी क्लियर। सो बेसिकली हमारे पास आजकल टाइम नहीं होता यार, तो 2-2.5 घंटे का एंटरटेनमेंट तो हम सोच भी नहीं पाते। बस ऐसे में आपकी हेल्प के लिए 5 का 5 की लिस्ट के थ्रू कुछ 5 शॉर्ट फिल्मों की बात करने वाली हूँ, जिसको देख के आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर होगा। सो लिस्ट की शुरुआत करेंगे अनुकूल से। नंबर 2 पे विल टॉक अबाउट दोबारा अलविदा, नंबर 3 पे दी अदर वे, नंबर 4 पे कतरन, एंड नंबर 5 पे बातें की बातें होंगी। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद अनुकूल। ये मूवी आप YouTube पे देख सकते हैं। सो बेसिकली ये एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट कहानी है, जहां हमारे साथ रोबोट्स भी रहते हैं, और फिर मोरालिटी, एथिक्स, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें एग्जामिन होती हैं पूरी स्टोरी लाइन में। इन शॉर्ट, अगर साईफाई मूवीज पसंद है विद अ टच ऑफ इमोशन, देन ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स टाइम कंस्ट्रेंट तो है ही। बाकी मेरी इस लिस्ट की और 4 फिल्मों की बातें अभी बाकी हैं। ऑल यू नीड टू डू इज स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, क्योंकि वो सारी बातें लेके अभी वापस आऊंगी। दिस इज मी श्रुति, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vizba la murga. Mirci, murga. Murga.
2: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा
2: लो। अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है
3: साहब जी,
2: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊँ?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा था बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था। मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले,
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया।
3: ओह माय गॉड।
2: अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. Say whoa!

0: doesn't matter, Babu Moshai.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लीजिए. आप जहाँ जा रहे हैं उसकी बात तो बिल्कुल ही नहीं हो रही. मैं तो एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली फिल्म्स जिसमें साइज मैटर नहीं करता. मतलब 2-2.5 घंटे की फिल्म देख के भी आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको एक 20-25 मिनट की मूवी देख के आ सकता है मजा. सो बस आज का 5 का 5 की लिस्ट कुछ ऐसी ही फिल्मों को डेडिकेटेड है जिसके लिए आपको ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी अनुकूल. नंबर 2 पे अब बात करना चाहूंगी फिल्म दोबारा अलविदा के बारे में. सो इस मूवी को भी आप YouTube पे देख सकते हैं. एंड ये कहानी है 2 एक्स लवर्स की जो एक लेट नाइट कैब राइड में वापस से टकरा जाते हैं, यू नो, राइड शेयरिंग ऐप की वजह से. और फिर उस पूरे जर्नी में ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं फॉर द पास्ट दैट दे हैव शेयर्ड. फिल्म में बहुत सारे थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं, हार्ट ब्रेक, क्लोजर, अनरिजॉल्वड इमोशंस एंड व्हाट नॉट. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, आई गेस आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए. चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म द अदर वे जिसको आप YouTube पे देख सकते हैं. वेल, ये मूवी एक ब्राइड टू बी रेवा की कहानी एक्सप्लोर करती है जो शादी को लेकर काफी ज्यादा डाउटफुल है. फिल्म में उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके फियर्स और उसकी जिंदगी में आने वाले बदलाव को लेके बहुत सारी बातें हैं. ऑल इन ऑल रेवा की जो जर्नी है वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल फ्रीडम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करती है. सो इफ यू आर अ गर्ल एंड शादी को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हैं तो ये फिल्म जरूर देखना. बाकी लिस्ट में और भी 2 ऐसी ही शॉर्ट फिल्मों की बातें बाकी हैं. बाबू मोशाय, ऑल यू नीड टू डू इज स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची क्योंकि वो सारी बातें वापस यहाँ पे होंगी. मैं हूँ श्रुति एंड इट्स हॉट.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा,
0: मिलेगा. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: भाई कम टाइम में भी ज्यादा मजा मिल सकता है।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ बाबू मोशाय, स्पेसिफिकली वो फिल्में जिनका साइज काफी छोटा है लेकिन वो एंटरटेनमेंट भरपूर दे रही हैं। सो पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट अनुकूल, नंबर दो पे हमने बात किया दोबारा अलविदा के बारे में, नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड द अदर वे, और अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म कतरन जो 14 मिनट की कहानी है और आप इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं। कहानी एक एल्डरली कपल की है प्लेड बाय पीयूष मिश्रा एंड अलका आमिन, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत सारी इनकम्पैटिबिलिटी फेस कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट ये फिल्म रिलेशनशिप के ट्रेजिक टॉक्सिसिटी को एक्सप्लोर करती है। अ डेफिनेट वॉच आई मस्ट से। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बातें जिसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू आर इन। फिल्म में किस तरीके से कुछ दोस्तों के बीच की कॉन्वर्जेशन ग्रेजुअली उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को, उनके लोनलीनेस, उनके इमोशनल वल्नरेबिलिटी को सामने लेकर आती है इज रियली ब्यूटिफुल। तो अगर आपकी जिंदगी में फिलहाल कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो प्लीज ये फिल्म जरूर देखना। बाकी मेरी इस लिस्ट में और भी कुछ ऐसी ही शॉर्ट फिल्में ऐड करना चाहो देन कनेक्ट करके बताओ ना मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या फिर इंस्टा पे। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
3: उत्तपा
4: में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
3: खट खट, हो दैट.
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. मिर्ची, इट्स हॉट.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने मैचबॉक्स शॉर्ट्स के अंदर जर्नलिस्ट लीना धानकर की बुक द गुरुग्राम स्कूल मर्डर के स्क्रीन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। सो बेसिकली द इंसिडेंट हैपेंड इन 2017, जहां 7 साल का एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था एट अ स्कूल। बस इस चीज को लेके मेरे 2 सेंस हैं। पहली चीज ये कि डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बननी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इन द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम मामले की वल्नरेबिलिटी, इसकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भाई, इस फिल्म के टीजर नहीं, स्क्रीमर्स रिलीज होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3 एकोज ऑफ द पास्ट की, जिसके मेकर्स ने इसके प्रमोशन को लेके एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड कि इस मूवी के बाइट साइज हॉरर प्रोमोज रिलीज किए जाएंगे टिल इट्स रिलीज, विच इज हैपनिंग ऑन द 12th of June इन थिएटर्स। आमिर खान के सितारे जमीन पर अगर आपने मिस कर दिया था इन थिएटर्स या OTT, देन ब्रो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फाइनली ये मूवी TV पे प्रीमियर होने वाली है एंड द चैनल इज गोना बी सोनी मैक्स और डेट है 31st of May, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड। सर इतना गुस्सा मत होइए।
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: अच्छा सुनो, मेरे साथ रिवर्स देखने चलोगे क्या?
1: बॉलीपीडिया।
0: अगर इस फिल्म का नाम यही रखा जाता तो शायद आप फिल्म देखने इसी नाम के साथ जाते। ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। मैं बात कर रही हूँ अबाउट दिस फिल्म लव आजकल 2, जो रिलीज हुई थी 2020 में, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, जिसमें कार्तिक आर्यन और सारा अली खान लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। सो बेसिकली एक इंटरव्यू में खुद इम्तियाज अली ने रिवील किया कि पहले इस मूवी का नाम रिवर्स रखा जाने वाला था, बट देन समहाउ दे प्लान कि चलो लव आजकल 2 रखते हैं। एंड कहीं ना कहीं इम्तियाज अली के हिसाब से ये मूवी इसलिए भी नहीं चली क्योंकि सबसे पहली चीज तो इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट फॉर हिम, एंड दूसरी चीज क्योंकि इसका नाम लव आजकल 2 रख दिया गया तो लोगों ने उसी हिसाब से इसके साथ अपने एक्सपेक्टेशंस जोड़ लिए। बिकॉज यू नो सैफ वाली वो लव आजकल कितना पसंद आई थी हमें, तभी मैं कहती हूँ बड़े पर्दे पे जो कहानियां आप देखते हैं उसको बनाने में बहुत सारी छोटी छोटी और कहानियां बन जाती हैं जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
3: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: भाई इस सिचुएशन में मुझे ना मम्मी की बहुत जोर से याद आती है।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूं आप, मैं हूं आपके साथ श्रुति, और मैं बीमारी की सिचुएशन की बात कर रही हूं यार। और ऐसे में दो कैटेगरी ऑफ लोग याद आते हैं, इनफैक्ट देखा है मैंने, जिसमें फर्स्ट आर दोज जिनकी अगर तबीयत खराब हुई तो भाई इनको चाहिए अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की पैम्परिंग। इनको आस पास 10-12 लोग चाहिए जो हर दूसरे मोमेंट इनसे पूछते रहे, बेटा ठीक है ना, बेटा पानी चाहिए क्या, बेटा कुछ लेकर आ जाऊं, इफ यू नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ लोग है, ओहो, इनकी तबीयत खराब होगी नहीं कि राखी सावंत की आत्मा आ जाएगी इनके अंदर, एंड दे विल बी लाइक आवाज नीचे और 20 कदम पीछे, क्योंकि इनको नहीं चाहिए होता है कि कोई इनके पास बैठ के सांस भी ले। उनको उसके सांस की आवाज पे भी इरिटेशन होगी और इनका डिसीजन ऐसा आएगा कि या तो मैं आज खुद को मार लूंगी या तो तुझे ही मार दूंगी, निकल जा यहां से। तो बताइए फिर आप इन दोनों में से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? मैं तो सिचुएशन के हिसाब से स्विच करती रहती हूँ यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: खट खट।
5: Who there?
4: बनता।
5: बनता who?
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
5: खट खट। Who there?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

किसी और को कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Radio Mirchi. वैसे तो it's hot, लेकिन आज के रेट को देखने की कोशिश करें तो मौसम के साथ साथ ये भी बड़ा ही हॉट है। एंड देखिए ना, इसके फ्लक्चुएट होने से हमारे इमोशंस जो है किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं, खासकर जब पता हो कि अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं हैं, तो भी ये आपको और हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.05, पाकिस्तानी रुपीज 76.81, बांग्लादेशी टाका 33.68, नेपाली रुपीज 41.59 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 90.82। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

0: पुरानी यादों में ऐसा क्या होता है कि हम हमेशा उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, एज इफ ये पुरानी यादें ना होकर मैग्नेट हो? वेल, ऑन अ रीसेंट ट्रिप टू हैदराबाद, आई एक्चुअली फाउंड द आंसर टू इट.
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना.
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara, and now you tuned in with me on Mirchi. And on my recent trip to Hyderabad, mujhe ek baat samajh mein aayi ki hum purani yaadon ki taraf khinche chale jaate hain because of the reason ki hum purani yaadon mein comfort paate hain, sukoon paate hain, aur tabhi hum chahte hain ki yaar purani yaadon se jude koi bhi kisse ho, koi bhi baatein ho, koi bhi jagah ho, kuch bhi ho, hame wahan par jaakar unko relive karne mein bada maza aata hai. Aur jab ab ki baar main Hyderabad gayi na, तो एक्चुअली मैंने पुरानी यादें जी. कैसे? क्योंकि बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में हम अक्सर वहाँ जाया करते थे. मेरी दो दो खालाएं वहाँ पे रहा करती थी. फिर हम सब बड़े हुए, बिजी हुए, कजन्स ने शहर बदल लिए, हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए, हैदराबाद जाना ही नहीं हुआ. और अब जब इतने सालों बाद मैं वहाँ गई ना, तो मैंने एक चीज डिसाइड करी कि मैं ना कुछ नया नहीं एक्सप्लोर करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर द ओल्ड मेमोरीज जो हम तब किया करते थे जब हम बच्चे थे. तो मैंने उन्हीं जगहों पर चाट खाई, उन्हीं जगहों पर आइसक्रीम खाई जहां से हम बचपन में खाया करते थे. हालांकि अब वो क्वालिटी मेंटेन नहीं है, लेकिन यादें तो मेंटेन है यार. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरीज आई विजिटेड ऑल दोज एरियाज, ऑल दोज प्लेसेस. उन्हीं गली कूचों में मैं घूमी जहां पर बचपन में हम घूमा करते थे. हालांकि आज उन जगहों पर मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, एक काम जरूर था, मेरी यादों को टटोलना, जो मैंने किया. और बड़ा सुकून मिला यार मुझे ये सब करके. क्या है कि पुरानी यादों के अंदर ये जो कंफर्ट होता है ना, इट्स मोर लाइक अ कुशन देन एनीथिंग एल्स. एंड आपको पता होता है कि ये कंफर्ट का श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है कि अगर इस कुशन पे गिरे ना तो चोट नहीं लगेगी.

इस क्वेश्चन पे गिरे, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, वो डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी जी चुके हैं. एंड नॉस्टैल्जिया डेफिनेटली फील्स लाइक होम. तो चलो फिर विड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालूं, वही पुरानी यादों को ताजा करते हैं और चलते हैं अपने कंफर्ट जोन में. और इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirci, burka.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा, उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घर पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं मैं, सर मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको ऊपर ले रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब, मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक तो परेशान हूँ मैं, जो हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ। वो भी
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू
1: कुकुड़
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
3: भारत सरकार का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
7: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: ये गाना इस गाने पे तो झूमता है आज भी सारा जमाना. एंड द गाना इज मेरा पिया घर आया ओ राम जी.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. याराना मूवी का ये गाना has been a super duper hit since years. गया ही नहीं हमारी प्लेलिस्ट में से. आज भी ये गाना चल जाता है ना तो सब नाचने लग जाते हैं like crazy. But यार ये गाना जो था which was sung by कविता कृष्णमूर्ति, इस गाने को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला था. एंड इन फैक्ट इस गाने में जो कोरियोग्राफी थी सरोज खान जी की, दैट वॉज ऑल्सो अमेजिंग. ऊपर से माधुरी दीक्षित का डांस, तो चार चांद तो लगने ही थे इस गाने को. वेल, ये जो मूवी थी याराना, इसके बारे में एक बात है जो मुझे आज जाके पता लगी है, which is कि दिस फिल्म की स्टोरी वाज इंस्पायर्ड एंड अडैप्टेड फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी विच वाज स्लीपिंग विद द एनिमी, जिसके अंदर जूलिया रॉबर्ट्स थी. अब तो ये मूवी देखनी पड़ेगी 100%. एंड ऑल्सो इस फिल्म के अंदर 1977 की एक बॉलीवुड क्लासिक फिल्म हुआ करती थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए. इस फिल्म से भी कुछ इधर उधर छोटी मोटी इंस्पिरेशन ली है, और जिन्होंने 1977 की वो फिल्म देखी उनको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या चीजें इधर आई है याराना में वहां से उठकर. मजे की बात तो ये है कि इनिशियली जब इस फिल्म की कास्ट डिसाइड हुई थी तो गोविंदा को अप्रोच किया गया था फॉर द मेन लीड, ऑफ कोर्स ऑपोजिट माधुरी दीक्षित. लेकिन फिर स्केड्यूलिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ी. उसके बाद जैकी श्रॉफ का नंबर लगा, लेकिन फिर अगेन उनकी डेट्स का भी इशू होने लग गया. एंड फाइनली ऋषि कपूर स्टेप्ड इनटू द रोल. इनफैक्ट जो रोल राज बब्बर ने प्ले किया है उसे कमल हसन को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को डिक्लाइन कर दिया बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू पोर्ट्रे अ नेगेटिव कैरेक्टर. लेकिन एक बात ऐसी है जो शायद आपको नहीं पता होगी कि याराना मूवी के बिहाइंड द सीन्स में वरुण धवन भी है. बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do
1: the iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: याराना मूवी की शूट के दौरान देयर वाज दिस वन सीन जो कि ट्रेन में शूट होना था पब्लिक के बीच में, और पब्लिक की अटेंशन अवॉइड करने के लिए ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित ने क्या किया पता है आपको?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित पब्लिक के बीच में पहुंचे भेष बदल कर। दैट वाज दे वर वेयरिंग बुरकास। हैदराबाद में ये शूट हो रहा था एंड ट्रेन के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, और इन लोगों ने जब ये शूट किया तब इन लोगों ने बुर्का उतार दिया होगा ऑफ कोर्स, लेकिन पब्लिक को अवॉइड करने के लिए बुर्का पहने हुए थे ये लोग। हुआ ये कि जब तक इनकी ट्रेन पुणे स्टेशन पहुंची तब तक ऋषि कपूर का बुर्का उतर चुका था, जिसकी वजह से कुछ बहुत ही मजाकिया किस्से वहां पर हुए जो की पूरी टीम ने एंजॉय किया। Hey, and by the way, there was also this Varun Dhawan नाम का एक छोटा सा लड़का जो कि अपने पापा इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन के साथ साथ जगह जगह फिर रहे थे, and he was present behind the scenes of this film. In fact, जब इस फिल्म की शूट स्विट्जरलैंड में हो रही थी, at that time वरुण धवन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि ये लोग बस में आया जाया किया करते थे, एंड वरुण धवन सबको एंटरटेन किया करते थे, एंड यूज्ड टू डांस अ लॉट विद माधुरी दीक्षित। और जब वो बड़े हो गए और माधुरी दीक्षित से मिले तो माधुरी ने उनको याद दिलाया कि कैसे वो डांस किया करते थे, और उस तरीके का डांस माधुरी ने कहा कि उन्होंने उनका ऑन स्क्रीन भी नहीं देखा है जिस तरीके का उन्होंने उस जमाने में बस में किया था। अगर मैं वरुण धवन की जगह होती ना तो शायद मैं ये बोल चुकी होती कि बचपन में किस्मत का खेल नहीं पता था ना, तो बचपन में जो डांस किया वो बहुत ही दिल से किया, बड़े होते होते हमारा जो डांसिंग टैलेंट है वो कहीं और निकलने लग गया, बिकॉज ऑफ द रीजन कि बड़े होने के बाद हम किसी के गाने पर नहीं किस्मत के इशारों पर नाचने लग जाते हैं, और बेस्ट डांस वही निकल के आता है। बॉस, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Agarkar.
6: Agarkar who?
5: Agar karna hai to kar, warna chhod de.
6: Cut, cut. Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपको ये आवाज सुनकर कुछ याद आया? पहले अगर नहीं आया तो ये आवाज आपको जिब्रिश लग रही होगी, लेकिन आगे जो मैं बताने जा रही हूँ ना, आप डेफिनेटली सारे डॉट्स कनेक्ट करके याद कर पाओगे कि अच्छा, ये तो वो बात कर रही है सारा।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये आवाज पिंगू की है। याद है पिंगू? DD1 पर ये छोटा सा पेंगुइन अपनी मस्ती और शरारतों से हमें कितना हंसाता था, दिल खुशी से झूम उठता था। बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ एक्सप्रेशंस और मजेदार साउंड्स के साथ ना, पिंगू ने हम सबका दिल जीत लिया था। पिंगू के साथ उसकी छोटी बहन, उसके मम्मी पापा और वो क्यूट से आइसबर्ग हाउसेस, सब कुछ कितना प्यारा था ना। मुझे ना आज भी पिंगू वाला एनिमेशन बड़ा प्यारा लगता है यार। क्या आपको याद है जब पिंगू अपनी छोटी बहन को परेशान करता था, तब वो अपने पापा से डांट भी खाता था। वो मासूमियत और वो मजाक से भरे हुए पल आज भी हमारे बचपन की प्यारी सी यादों में से है। और इस शो के एनिमेशन का मुझे वो वाला पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, जहाँ पर इन पेंगुइन्स का टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाने वाला सीन होता था। सब खाना खाने लगते थे और ये सारी की सारी फैमिली इतनी क्यूटली टेबल पर बैठकर फिश खा रहे होते थे। आज भी मैंने जब ये एनिमेशन शो देखा ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज का एहसास हुआ और वो था सुकून। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La firma la burga. Milci, burga.
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख कराए से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा
1: लो। अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है
2: साहब जी,
1: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊँ
1: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था, उसे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा था बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया।
2: ओह माय गॉड।
1: अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
3: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
3: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: लता जी और उदित जी की आवाज में दिस गाना इज सच अ गाना जिससे कि हम कभी नहीं उभर पाए यार. मतलब ये जो म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह जी ने, इट वॉज समथिंग विच नो वन कुड एवर रिक्रिएट. रिक्रिएट तो चलो दूर की बात है, मगर इसके आसपास के बराबर का भी कुछ म्यूजिक मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा निकल के आया. आई तो आई एम जस्ट इन लव विद दिल तो पागल है का म्यूजिक और उसके गाने एंड ऑफ कोर्स द फिल्म एज वेल. इट्स अ पैकेज डील एंड आई कैन जस्ट नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, सो आई बेटर मूव ऑन.
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And before मैं again दिल तो पागल है के बारे में blabber करने लग जाऊं, अच्छा यही होगा कि मैं अगली बात छेड़ देती हूं, which is मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों की धुनें मैं आपस में मिलाकर आपके लिए चला देती हूं और आपको गेस करना होता है कि ये जो दो धुनें आपने सुनी वो कौन से दो गानों की है. तो ये अभी गो आज की धुनों के साथ.

बस जी, अब मुझे डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो, एंड स्टे ट्यून्ड हो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: midday mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: गरम मसाला का ये जो गाना है ना, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसकी खबर भी कुछ गरम मसाले से कम नहीं है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, गरम गरम मसाले वाली खबर ये है कि दिस गाना फ्रॉम द फिल्म गरम मसाला इज नॉट एन ओरिजिनल। Well, the deal is कि ये गाना actually inspired है from an Egyptian song जो कि 2001 में release हुआ था, वाला अला बल हो, which was sung by Amrut Diab, who is an Egyptian singer and composer, and the song is this one. ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले इस गाने के कंपोजर को ढूंढने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स या तो वो प्रीतम दा होते या तो वो अनु मलिक, एंड इस केस में इट इज प्रीतम दा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's hot
4: Cut cut
5: Who that
4: Zaheer
5: Zaheer Zaheer who
4: Zaheer se baat hai main hi hu aur koi nahi
5: Cut cut Who that
6: Only on 89.6 Mirchi 1
7: Mirchi
6: It's hot

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है सोनू सूद जो है, he has been saving lives since 1997.
2: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Zara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और अब आप सोचोगे कि हाँ क्या बात कर रही हो यार सारा, सोनू सूद का दिल इतना बड़ा है कि ये इंडस्ट्री में आने से पहले से ये सारे काम कर रहे थे. तो वेल एक्चुअली वो जो जिंदगियां बचाने का काम कर रहे थे ना, वो नागराज बनकर कर रहे थे. हाँ, आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि मुझे भी नहीं था और हमने ये रियलाइज भी नहीं किया कि नागराज कॉमिक का एक टेलीविजन एड आया करता था और उस टेलीविजन एड में हरे कपड़े पहने हुए जो नागराज बंधु थे ना, दैट वाज सोनू सूद. रिवाइज करने के लिए आपको एक बार एड सुनाती हूँ, क्या पता आपको याद आ जाए.
3: नागराज जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आग का तूफान, आंखों में सम्मोहन, हाथों से निकले जहरीले नार.
1: अभी कुछ याद आया? वेल, इस एड में वो जो हीरो हुआ करते थे वो

अपने सोनू सूद ही हुआ करते थे यार। अगर आपको ये बात अच्छे से देखनी है और फिर बोलना है कि अरे हाँ यार, तो YouTube पे जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा ये ऐड। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Madam, disturbance aa rahi hai kya abhi?
1: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे
2: हैं? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो,
2: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
1: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: हैं, मोबाइल पे?
1: और क्या,
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है। दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब?
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद।
3: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Anguthi Wali Jelly.
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सोचते हैं कि खुद को डायमंड वाली अंगूठी दिलाएं, लेकिन इस दौर में भी तुम याद आई जाती हो यार। तुम्हें याद करके ना बचपन की मीठी यादें ताजा हो जाती हैं। वो छोटी रंग बिरंगी नरम नरम और मीठी जली जिसे उंगलियों में पहनकर राजा महाराजा जैसा महसूस करते थे यार। मैं अक्सर ना तुम्हें ट्यूशन पहनकर चली जाती थी, होमवर्क करते करते चुप चुप के तुम्हारे चटकारे लिए जाते थे, और तुम्हारी बेस्ट बात भी यही थी कि तुम्हें खाते खाते हाथ गंदे और चिपचिप नहीं होते थे। टॉफी और चॉकलेट के बीच तुमने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। जेब में चिल्लर हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खरीदने की जिद कभी कम नहीं हुई। दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हें उंगलियों में पहनना और फिर धीरे धीरे तुम्हें चाट चाट कर खाना, क्या मजा आता था यार। आज के फैंसी चॉकलेट्स और स्नैक्स के बीच में तुम कहीं खो तो गई हो, लेकिन तुम्हारी यादें अब भी हमारे साथ हैं। काश फिर से वो बचपन लौट आए और हम तुम्हें वैसे ही उंगलियों में पहनकर खिलखिलाते हुए तुम्हारे चटकारे ले सके। तो सच बता रही हूँ, आज ये जो हम सोने चांदी की अंगूठियाँ पहनते हैं ना, उन्हें भी एक पल साइड में रखने के लिए तैयार हो जाऊंगी मैं। थैंक यू हमारे बचपन को इतना मीठा और इतना रंगीला बनाने के लिए। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रॉबर्ट उलमान की आवाज में ब्लफ मास्टर मूवी से ये गाना इस कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, ये वो गाना है जो जब रिलीज हुआ तो गाने में बड़ी दिक्कत आई भाई, तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन गाना गाने में मजा भी उतना ही आता था यार, क्योंकि इसका म्यूजिक इतना जबरदस्त लगता है ना कि कोई इसे गुनगुनाए बिना रह नहीं सकता था। एंड द ट्रैक इज बुरे बुरे हम शैतान जर जर बचना रे हमसे। ये इस ट्रैक की खास बात थी कि इस ट्रैक में लिरिक्स हमें सिवाय इन लिरिक्स के और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी हमने बाकी सब कुछ ना रट्टाफाई कर लिया था। वेल, बेसिकली इस गाने की काफी लंबी चौड़ी लिरिक्स जो है वो इंडियन है ही नहीं, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, बल्कि पर्शियन लैंग्वेज में है। दैट इज द रीजन कि हमें कभी वो समझ में ही नहीं आया, लेकिन फाइनली मैंने आपके लिए इन लिरिक्स का मतलब जो है वो निकाला है। एंड इस गाने के अंदर बेसिकली बात की जा रही है कि बंदा जो है वो बंदी को बता रहा है कि देयर वाज अ टाइम एंड आई लव्ड यू, और मैं ना तुम्हारे साथ बड़ा खुश हुआ करता था, लेकिन फिर तुम जो है ना नॉटी हो गई, बदमाश हो गई, और तब से मैंने डिसाइड किया है कि तुम मेरे करीब नहीं आओगी अब। और ये जो बात कही गई है ना कि बोरो बोरो दिलम तोरा तोरा ना मिखाद, इसका मतलब ये है कि जाओ जाओ यार, मेरे दिल को तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, एंड नाउ आई डोंट वांट टू सी यू एनीमोर। माय गॉड, ये हंसी मजाक में कितनी गहरी बात कह गया गाना यार। मैं तो आज तक इस गाने को ऐसे ही लिया करती थी कि कोई फनी बात कह रहे हैं यार, कुछ नॉटी नॉटी बात बंदा जो है अपने बारे में कह रहा है, लेकिन यहाँ तो बेचारे बंदे का दिल ऐसा टूटा हुआ है कि वो बंदी से ये सारी सीरियस बातें कर रहा है यार। उफ, ये प्यार भी ना, एक बार इसके चक्कर में पड़ जाओ और दिल तुड़वा लो ना, तो आपके इमोशंस कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन इन इमोशंस की धुनें जो हैं ये कुछ और ही निकल के आती हैं। यानी कि लिरिक्स तो सीरियस हैं, लेकिन इमोशंस की धुनें इतनी फन होंगी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिल टूटने वाले गाने के ऊपर पब्स में लोग नाच भी लेंगे। आज जब इस गाने के मतलब पता लगा है ना मुझे, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि हाय, ये तो नाचने वाला गाना है ही नहीं यार। बट स्टिल, इस गाने के म्यूजिक को 10/10 देते हुए अब ये गाना मैं आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी मैं आपको यहाँ के अलावा तो मिल ही जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
2: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: खटखट।
5: कौन है?
4: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
4: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
5: खटखट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
7: Hello, Mirchi helpline?
8: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
7: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
8: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
9: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
10: मिर्ची घड़ी में शाम के बज गए चार।
11: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

0: और बात करने वाले हैं हम ऐसे ही कुछ प्रोफेशंस की जो अब खत्म हो चुके हैं। मिल्कमैन, जिसको हम लोग दूध वाला भी बोलते हैं, पहले दूध वाले आते थे घर घर दूध देने के लिए। आप अपना पतीला तैयार रखते थे और दूध छान के आप ले लेते थे, लेकिन अब वो काम टोटली खत्म हो चुका है। और उसके अलावा एक और ऐसा काम है, जी हाँ, लैंप लाइटर। स्ट्रीट लाइट्स में लैंप्स जलाने का काम भी एक काम हुआ करता था पहले जमाने में, लेकिन अब वो काम भी खत्म हो चुका है। देखिए, आने वाले टाइम में जिस तरीके से AI भी आ रहा है, हमारे सबके कामों में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन ये भी जानते हैं कि आने वाले जनरेशन को हम जरूर बताएंगे कि ये काम ना हम किया करते थे, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है, ये दिन दूर नहीं है। बाकी ऐसे मजेदार बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हेलो
1: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
2: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
0: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
2: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: मीसम नाम है।
2: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
0: 1200 रुपए।
2: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
0: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
2: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
0: जी
2: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
0: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
2: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
0: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
2: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
0: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़नेगी? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: सर इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
0: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
3: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
0: पिटोगे,
3: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: नजर डाल लेते हैं कि भाई वेदर क्या कहता है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: गर्मी तो बस बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। 43 डिग्री सेल्सियस है आज और बिल्कुल सनी। उसके अलावा अगर देखे रात का टेम्परेचर तो 33 डिग्री हो जाएगा। तो शाम को हल्की फुल्की हवाएं चलेंगी, आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं। बाकी गर्मी के मौसम को एंजॉय करिए, साथ ही साथ अगर आपके पास बाहर बालकनी में स्पेस है तो हल्का फुल्का पानी भी रख दीजिए फॉर बर्ड्स। बाकी आप सुनते रहिए मुझे यानी कि मिर्ची ईशा को 89.6 मिर्ची माने साथ।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future call now 3100 0813.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन...

0: अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बेमतलब बनी हैं, तो रुक जाइए, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। इस जीवन में बेमतलब कुछ भी नहीं है। ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि हर एक चीज का एक नाम होता है। जैसे आप अगर टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा रहे हैं तो उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ नर्डल। यस, एंड अगर आप अल्फाबेट्स में देखें, आई और जे जब भी आप लिखते हैं, स्मॉल आई और जे, तो उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, उस डॉट का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ टाइटल। और एक और आपको बता दूं तो अगर आपने कॉफी पी होगी बहुत से कॉफी आउटलेट्स पे, तो वहां पे आपको एक कप दिया जाता है, उसको एक कार्डबोर्ड के कवर के साथ, ब्राउन कवर के साथ कवर किया जाता है, उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ ज़ार्फ। ज़ार्फ, जी हाँ। ये एक स्ट्रेंज सी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, बड़ी अजीबोगरीब थी। एंड फॉर मोर ऐसी चटपटी बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट, अकबर।
5: अकबर हु?
4: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
5: खट खट, हु दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 5. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, it's hot.
0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

किसी और को कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Radio Mirchi. वैसे तो it's hot, लेकिन आज के रेट को देखने की कोशिश करें तो मौसम के साथ साथ ये भी बड़ा ही हॉट है. एंड देखें ना, इसके फ्लक्चुएट होने से हमारे इमोशंस जो है किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं, खासकर जब पता हो कि अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं हैं, तो भी ये आपको और हमको बहुत अच्छी तरह से पता है. लेकिन अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.05, पाकिस्तानी रुपीज 76.81, बांग्लादेशी टाका 33.68, नेपाली रुपीज 41.59 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 90.82. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burka, burka. La fiesta la burka.
1: Mirchi, burka. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं मैं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले आ रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
4: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
3: अभी कॉल करें 3100-0813।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM।

0: मेहरबान कदरदान, मैं आ गई हूँ मेरी चीशा आपके साथ एक नया फैक्ट शेयर करने। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है, सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहां पे डबल लेटर्स तीन बार यूज किए जा रहे हैं। मींस डबल लेटर का सेट है, तीन सेट हैं डबल लेटर्स के, और वो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जिसका नाम है, आपने सही सोचा, बुक कीपर। जी हाँ, बुक कीपर में डबल ओ भी आता है, डबल के भी आता है, डबल ई भी आता है। That's a strange one. और आप हैरान होंगे कि पूरी इंग्लिश में एक ही ऐसा वर्ड है जो ऐसा है। बाकी ऐसे फैक्ट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मेरी शीशा को उलियान 89.6 मिर्ची वन एट साथ।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Dosti kai kuch sulay madam. No sorry, no thank you.
2: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तो मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
6: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी,

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए मेरी अगर एनर्जी खत्म हो जाती है ना तो मुझे चार्ज करने के लिए एक कॉफी तो लगती है। चाहे मैं दिन में जितनी बार भी थक जाऊं मुझे कॉफी ही चाहिए उस समय, ताकि आई जस्ट रिस्टोर माय एनर्जी। बात करें एनर्जी की तो भाई कतर एनर्जी ने भी अनाउंस कर दिए हैं फ्यूल प्राइजेस। जून के महीने के जो प्राइजेस हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। जी हाँ, प्राइजेस कुछ इस तरीके हैं कि सुपर ग्रेड पेट्रोल जो है दैट विल बी अराउंड 2.10 कतरी रियाल पर लीटर, एंड प्रीमियम ग्रेड जो पेट्रोल है दैट विल बी प्राइज्ड एट 2 कतरी रियाल पर लीटर फॉर जून। और यही बात करें मई की तो मई में ये अराउंड 1.90 कतरी रियाल था। ये था अनाउंसमेंट कतर एनर्जी का। बाकी आप मेरे साथ अपडेटेड रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 107।
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो दोनों ने कौन से पिक्चर में भाई?
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कट कट।
6: Who that?
5: जस्सी।
6: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
5: जस्सी who has come आंटी जी।
6: कट कट। Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 6. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, it's hot.
0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

0: मेहरबान कदरदान जरा ध्यान दीजिए। वेलकम टू शाम शानदार और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज देने की। जी हाँ, बात कर रही हूँ मिर्ची मॉमी अवार्ड्स की, जो 5.0 होने वाला है बहुत जल्द। और उसके ऑडिशनिंग के लिए अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से जाके अपना फोन उठाइए, एक खूबसूरत सी वीडियो बनाइए अपने बच्चे के साथ और भेज दीजिए हमें, यानी 5001896 पे, जहाँ पे हम आपको न्योता देंगे कि एक चांस देंगे जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है अपने आप को प्रूव करने का। देखिए, माओ को प्रूव करने का मुझे पता है कोई मौका जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स लाइक यू विल लव द वाइब। एंड मिर्ची के साथ अगर आप मम्मी अवार्ड्स नहीं आए तो क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया। तो जल्दी से जाके रजिस्टर करिए और बन जाइए हिस्सा मिर्ची मम्मी अवार्ड्स का। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा
1: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले।
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM, Mirchi 1. It's hot.

أشهد أن لا

0: कितना ही प्राउड मोमेंट होने वाला है कल जब रिवील होगा हमारा द ग्रैंड रिवील ऑफ द पोर्ट्रेट क्रिएटेड फ्रॉम 3000 स्माइल्स अक्रॉस कतर. जी हाँ, छोटे बच्चों की फोटोज के साथ एक पोर्ट्रेट क्रिएट किया गया है और इसका रिवील होगा कल. And as you all know, कि कल है बहुत स्पेशल डे हम सब के लिए क्योंकि His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग रिवील कर रहे हैं मिर्ची स्प्रेड द स्माइल जहाँ पे बच्चों की फोटो से बनाया गया है पोर्ट्रेट ऑफ His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani और जहाँ पे हम इंजॉय करेंगे इस ब्यूटिफुल सी मॉर्निंग को और उसके साथ हम केक कटिंग भी करेंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे इनका बर्थडे भी. और आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं अपने बच्चों की फोटो. बस हमारे साथ बने रहिए, मिर्ची के साथ बने रहिए, मिर्ची के जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसके साथ भी बने रहिए, अपडेटेड रहिए क्योंकि वहां पे आपको पता लगेगा कैसे आप अपने बच्चों की फोटोज को देख सकते हैं. एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट.
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

क्या आप जानते हैं कि अरिजीत सिंह की जो आवाज अभी है वो पहले नहीं थी? क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसे ही वो जब इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट की तरह थे तो उनकी आवाज उस मुकाम तक नहीं जा पा रही थी और उनको उतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं मिल रही थी, गाने इतने अच्छे और पसंद भी नहीं आ रहे थे हमारे जजेस को, तो उन्होंने उस पे वर्क किया और अपनी आवाज को तोड़ा। दैट मींस जो इंडियन आइडल में उनकी आवाज थी और अगर आप उस आवाज को सुनते हैं और आज की आवाज को सुनते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। और उनका कहना था कि मैंने अपनी आवाज को तोड़ के एक नई आवाज क्रिएट की जो अब लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन इससे मुझे एक चीज या एक लेसन तो जरूर मिलता है कि इंसान जब अपने आप का एक जो पुराना इंसान है उसको मारता है और एक नए इंसान में अपने आप को ढालता है तभी उसको वो पॉपुलैरिटी मिलती है। दैट मीन्स सैक्रिफाइस, अपनी पुरानी आवाज को सैक्रिफाइस करके एक नए इंसान में बदलना, नई आवाज में बदलना बहुत चैलेंजिंग तो रहा ही होगा एंड उसके अलावा बहुत गट्स चाहिए वो चीज करने के लिए, वो परफॉर्म करने के लिए। बाकी हैट्स ऑफ टू अरिजीत सिंह जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और अपनी वॉइस को त्याग के एक नई वॉइस क्रिएट की और जो सब लोगों में बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। एंड फॉर मोर ऐसी मजेदार बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मैं चीशा कोहली ऑन 89.6 मिर्ची वाने साथ।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Bhatt.
6: Bhatt? Are Bhatt who?
5: Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt. Bike bahut awaaz karti hai.
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi ghadi mein is waqt baj rahe hain 7. Sunte rahiye 89.6. Mirchi One, it's hot.
0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

0: फ्री फ्री फ्री, अरे ये सुनते ही ना वैसे ही कान ऐसे खड़े हो जाते ना भाई, फ्री में क्या है फ्री में। बोले तो आपके लिए लाई हूँ एक अमेजिंग सा इवेंट। जी हाँ, मिर्ची ईशा आपके लिए इवेंट्स मजेदार ना लाए तो कौन लाएगा। तो आपको बता दूं, एक ऐसा ही इवेंट जो बिल्कुल फ्री है, यानी कि मिरयाल वाटर पार्क बीच, जो 1 जून से लेकर जून 30 तक टोटली फ्री है। एंड ये फ्री पब्लिक एक्सेस 6 PM to 11 PM है, टोटली फ्री है। हाँ, और यहाँ पे आपको मिलेगा भंडार परफॉर्मेंसेस का, चाहे वो स्पॉन्ज बॉब हो चाहे पॉ पेट्रोल हो, ये सारे क्रू आपको वहां मिलेंगे मिरयाल वाटर पार्क बीच में। अनलिमिटेड फन, अनलिमिटेड समर स्प्लैश, अरे ऑल जून आपका जो है ना, दैट विल बी एन अमेजिंग एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज आउट ऑफ इट, आई एम डैम श्योर। यहाँ पे हो रहे हैं बहुत सारे स्टेज शोज, मीटिंग चेज, स्काइज, स्पॉन्ज बॉब एंड पेट्रिक IRL, बहुत कुछ और भी। तो बस 6 बजे के बाद अपना टाइम फ्री रखिए और जाइए मिरयाल पार्क और एंजॉय करिए मेरे साथ, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स ऑन।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vie est pas la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
2: अपना नाम बता। मैं तेरी कंपनी
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 707

0: अगर आप भी हैं फुटबॉल लवर तो आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आई हूँ। वेलकम टू माय शो शाम शानदार, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फुटबॉल लवर्स की। जो मैच अगर देखना पसंद करते हैं और कतर टीम को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ। कतर वर्सेस साल्वाडोर होने वाला है 6 जून को बीएमओ स्टेडियम लॉस एंजल्स में, एंड कतर की टाइमिंग के अकॉर्डिंग 11 PM ये शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अलकास स्पोर्ट्स चैनल्स में। एंड ऑफकोर्स अगर आप कतर की टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं तो ये मैच देखना तो बनता है। तो देखिए और इंजॉय करिए मेरे साथ शाम शानदार, only on 89.6 Mirchi 1 at 8.
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad, Irshad.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

लगे। शाम ढल रही है, रात दस्तक दे रही है, उम्मीद है हमारी बातें आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें छोड़ रही हैं। वेलकम टू शाम शानदार, जहाँ पे अब समय हो चुका है विराम लेने का, यानी कि हमारे जाने का समय आ चुका है। और कल मिलूंगी आपसे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नई शाम के साथ, नई बातों के साथ और नए कुछ फैक्ट्स के साथ। बस इसी के साथ आज लेती हूँ आपसे अलविदा। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजाम और आज जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you? Who?
4: Are whom are you looking for, madam?
5: Cut cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi,
6: it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: बज चुके हैं रात के 8. पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे.
0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है इस्तकबाल। और एक ऐसा रोग लगा है जमाने से जिसका इलाज ढूंढे नहीं मिलता यार। उबैद सिद्दीकी साहब का शेर है कि उदासी आज भी वैसी है जैसे पहले थी, उदासी आज भी वैसी है जैसे पहले थी, मकी बदलते रहे मकान नहीं बदला। मकी कहते हैं उसको जो किसी मकान में रहता हो। तो आज देखिए आपको एक नया लफ्ज भी मिल गया, उदासी आज भी वैसी है जैसे पहले थी, मकी बदलते रहे मकान नहीं बदला। और यही बात होती है, उदासी ऐसी बीमारी होती है ना कि आपकी रगों में घुस जाती है, फिर वो और उसे निकालना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी। बहरहाल सारी उदासियों का इलाज है महफिल में दोस्तों के साथ बैठना और रिलैक्स हो जाना। वही महफिल सजा रहा है आपका ताशी आपके लिए। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, इट्स हॉट।

बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी। बहरहाल सारी उदासियों का इलाज है महफिल में दोस्तों के साथ बैठना और रिलैक्स हो जाना। वही महफिल सजा रहा है आपका ताशी आपके लिए। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
0: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
0: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
0: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
0: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
0: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
0: गर्लफ्रेंड से

0: बातें करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
0: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
0: हाय हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है कि हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
2: नहीं सर मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
2: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटक।
4: हाउ इज द जोश?
5: हाय सर,
4: हाउ इज द जोश?
5: हाय सर।
3: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक,
5: बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आप कताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब से। बिल्कुल जी, इनका जन्म ऑफ कोर्स 1919 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और 2000 सन में ये मुंबई में हमारा साथ छोड़ के चले गए। और इनका जमाना जो शेर जानता है वो है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। लेकिन इनका एक गजल के दो शेर आपको नजर करूंगा जो मेरे बड़े पसंदीदा हैं। कहते हैं कि यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, दर्द खुद बनते हैं खुद अपनी दवा होते हैं। वाह जी वाह, तो जो रोग हुआ है आपको उसका इलाज भी आप ही के पास है। है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, दर्द खुद बनते हैं खुद अपनी दवा होते हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपके ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Mehfil mein aapka Tashi hai aapke saath aur main na ek aise shehar se aata hu jo thoda sa quaint type ka hua karta tha, jo thoda sa shant type ka hua karta tha. Ab to wo bhi sare shaharon ki daud mein bada aage hai. Lucknow ki baat kar raha hu main, lekin ek zamane mein Lucknow ka andaaz alag tha. Aur jab aap Lucknow se nikal kar kisi bade shahar mein ja ke jhaankte hain तो आपको ये एहसास होता है कि यार यहाँ तो लोग अलग ही रिदम में हैं, अलग ही लय में दौड़ रहे हैं. और शुरुआत शुरुआत में आपको कामिल बेजादी साहब का ये शेर याद आता है कि क्या तेरे शहर के इंसान हैं पत्थर की तरह, क्या तेरे शहर के इंसान हैं पत्थर की तरह, कोई नगमा, कोई पायल, कोई झनकार नहीं. अब ऐसी बात सच भी नहीं होती, क्योंकि ऑफ कोर्स आप शहर में नए आए हो, आप बस उन इलाकों तक नहीं पहुंचे हो जहां पे यू नो नगमा हो, जहां पे पायल हो, जहां पे झनकार हो. लेकिन शुरुआत में तो कामिल बेजादी साहब का ये शेर मेरे ख्याल से हर शख्स जो एक छोटे से शहर से उठ के एक बड़े शहर, एक दौड़ते शहर में आया है, उसको महसूस हुआ होगा कि क्या तेरे शहर के इंसान है पत्थर की तरह, कोई नगमा, कोई पायल, कोई झनकार नहीं. स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ और ले गया आया हूं दोस्त नगमे भी, पायल भी और झनकार भी. स्टेडियम, इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
3: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज अ चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोर्डल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: खट खट.
6: कौन है?
5: अज्जू.
6: अज्जू कौन?
5: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए. होए!
6: खट खट, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ एंड उसी के साथ अब वक्त आ चला है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: हाँ जी और आज के इस ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाए शबाना आजमी के पिताजी कैफी आजमी साहब की लिखी हुई एक गजल जिसको जगजीत सिंह जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी आवाज दी उस गजल की एक छोटी सी कोशिश पेशे खिदमत है आपके लिए गौर फरमाइएगा तुम

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

हर कलाकार के दो चेहरे होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक चेहरा प्रोफेशनल लाइफ का, एक चेहरा पर्सनल लाइफ का, जिसे वो अक्सर छुपा छुपा के रखते हैं या उतना ही दिखाते हैं जिससे उनके प्रोफेशनल लाइफ के चेहरे पे कोई असर ना पड़े। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इस मामले में बिंदास निष्कपट होते हैं। वो जैसे पर्सनल लाइफ में होते हैं वैसे ही खुद को बताते हैं, और ऐसे ही कलाकार थे वो जिन्हें हिंदी सिनेमा का फर्स्ट शोमैन कहा जाता है, राज कपूर साहब, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ हिम। उनमें वो सारे फ्लॉज थे जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना। वो लेडीज से फ्लर्ट करते थे, कई बार फ्लर्ट करते करते लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। शादीशुदा होने के बावजूद उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स की, रिलेशनशिप्स की बारे में हम सबने पढ़ा सुना है, और उन्होंने इन सब बातों को कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत की वो था उनका क्राफ्ट, सिनेमा, जिसने उनकी आवारगी को एक सलीका दिया। वो शायर निदा फाजली की कुछ लाइन्स हैं कि बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: हेलो
1: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
0: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
1: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
0: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
1: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
0: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
1: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
0: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
1: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
0: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
1: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
0: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
1: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
0: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
1: आगे वो भी आगे हैं। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
0: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
1: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ऊपर ला रहा हूँ,
0: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
1: किसकी डेथ हो गई सर?
0: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
1: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
0: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
1: मैं कहाँ पर हूँ,
0: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
1: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
0: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
1: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
0: यार।
1: थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
5: दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.
9: Purani jeans.
10: Purani jeans. With Charu. Only on.

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा

0: आपको पता है डायरेक्टर अनीस बज़मी ने राज कपूर के साथ काम किया हुआ है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1982 की फिल्म प्रेम रोग में सेवेंथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे अनीस बज़मी। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर का कितना खौफ रहता था सेट्स पे।
1: बहुत ही टेरर था उनका, कब क्या होगा वही नहीं पता होता था। एंड थोड़े शॉर्ट टेम्पर भी थे, जब एडिटिंग करते थे तो वो शराब छोड़ देते थे एंड सिगरेट छोड़ देते थे। जब तक फिल्म एडिट होगी, चाहे वो एक महीना हो, दो महीना हो, दस महीना हो, और दोनों चीजों से बहुत प्यार था उनको, तो वो एक इरिटेशन लेवल भी जो है ना वो उस कदर होता था कि आप मतलब बस नाखून जितनी खाली गलती की थी और उसके बाद फिर आप अपनी दशा देखिए क्या होगी।
0: पर एक चीज जरूर होती थी, फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट्स पे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा डांट डपट मारपीट हो, बाद में मजा भी उतना ही होता था बिकॉज पार्टीज इतनी सारी होती थी कर्टसी राज कपूर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rg.charu, rg.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
6: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन

ये जो इंडिया का रशिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन तो राज कपूर साहब को भी जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो सीन कुछ यूं था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे रशिया और इंडिया के बीच अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे, बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, जिसकी वजह से इंडियन फिल्में रशिया में रिलीज हुई। एंड समहाउ राज कपूर के किरदार जो उन्होंने अपनी फिल्मों में प्ले किए थे, उन किरदारों की इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, उनकी स्ट्रगल्स और एस्पिरेशन से रशियन लोगों ने इतना कनेक्ट किया कि उनको एक अलग तरह की उम्मीद और खुशी मिली उन फिल्मों से, उन किरदारों से। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राज कपूर बिकेम दिस सेंसेशन, दिस आइकॉन इन रशिया। मतलब राज कपूर को बिना वीजा रशिया में एंटर करना अलाउड था। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि राज कपूर जब मॉस्को में एक टैक्सी में बैठे तो वो टैक्सी सड़क पे नहीं हवा में चल रही, क्योंकि लोगों ने खुशी में उस टैक्सी को उठा लिया था। राज कपूर के गाने बिकेम एंथम्स इन रशिया, जो आज भी वहाँ प्ले होते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: खट खट,
2: कौन है?
1: इशांत।
2: इशांत कौन?
1: इशांत गदाधारी भीम। इशांत
3: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on

0: रणधीर कपूर को डायरेक्शन सीखने के लिए राज कपूर साहब ने डायरेक्टर लेक टंडन के पास भेजा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो रणधीर कपूर जब ये डायरेक्शन सीखने के लिए घर से निकलने लगे तो राज कपूर साहब ने उनको क्या कहा? रणधीर कपूर ने एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पे शेयर किया था, सुनिए।
1: राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना, ये वैल्यू सिस्टम है। राज कपूर जी ने हमको सिखाया कि पैसों की कदर होनी चाहिए। वी वर ब्रॉट अप दैट वे। बस में गए, ट्रेन में गए, पर जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे, मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। कोई भिखमंगा आया तो हंसने लगा कि साला तुम ऐसी गाड़ी में जाता है, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है। घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए हैं। तो बबीता से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से, और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी और लेके मेरे पिताजी के पास गया। बहुत खुश हुए, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया और कमाओ और गाड़ियां लो। पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर हैं, एक तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेंगे राज कपूर बस में बैठा हुआ है, ये तुम्हें जरूरत है।
0: क्या ही मजा मस्ती ड्रामा चलता होगा कपूर हाउस होल्ड में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: डीडीएलजे फिल्म में शाहरुख खान का किरदार राज जो तुनतुना बजाता है, अब तो हम सब जानते हैं कि उसको मैंडोलिन बोलते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और जब ये फिल्म शूट हो रही थी ना, तो शाहरुख खान ने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: मैंने पूछा था कि यार आदि, व्हाई डिड यू डिसाइड ऑन अ मैंडोलिन? उन्होंने मुझे बताया कि मैंडोलिन उनका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। उसका एक बड़ा ही कमाल का रीजन है कि व्हाई ही लाइक्ड अ मैंडोलिन। आदि हैज ऑलवेज बीन अ मिस्टर राज कपूर फैन, उन्हें बड़े अच्छे लगते थे। उन्होंने मुझे बताया मोस्ट ऑफ द म्यूजिक और लॉट ऑफ द म्यूजिक दैट इज यूज्ड इन मिस्टर राज कपूर्स फिल्म्स was from the mandolin.
0: Well, इस फिल्म में शाहरुख खान का नाम राज, राज कपूर के नाम पर ही था। एंड राज कपूर खुद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, अकॉर्डियन, बैक पाइपर, पियानो, हारमोनियम, तबला एंड मैंडोलिन भी। और उनकी फिल्मों के गानों में जो मेरा फेवरेट है जिसमें मैंडोलिन यूज हुआ है ना, वो ये वाला है जो अब हम सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

0: हेलो
1: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
0: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
0: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
0: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
0: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
0: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
0: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
0: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
0: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है,
0: साहब जी को
1: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
0: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
0: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
0: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
0: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
0: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो बोल दो बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. Purani Jeans with Charu, only on

0: राज कपूर का असली नाम या पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो राज उनका मिडिल नेम था और उनके असली नाम पे ही रणबीर कपूर का नाम है। और एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में रणबीर ने ना राज कपूर साहब के साथ जुड़ी अपनी एक बचपन की बहुत ही प्यारी याद शेयर की थी, सुनिए।
1: मिस्टर राज कपूर पास्ड अवे व्हेन आई वाज रियली यंग, आई वाज अराउंड 6 इयर्स ओल्ड। वेल आई रिमेंबर दैट व्हेन वी वर रियली यंग, ऑल ऑफ अस, माय सिस्टर मी, करीना, लोलो, माय अदर कजिन्स फ्रॉम दिल्ली, ही यूज्ड टू कॉल अस टू द रूम, यू नो, एंड ही हैड ऑल दीस टॉफीज, यू नो, व्हिच ही यूज्ड टू बाय व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल, एंड ही यूज्ड टू हाइड इट इन हिज रूम। सो ही यूज्ड टू लाइक टेक ऑल सलाम्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, मेक अस डू सलाम, give him a kiss, do a little dance for him, and then he used to give us one toffee. And that getting that toffee was a very big deal. You know, I still have remember that taste.
0: आपको पता है जब रणबीर से राज कपूर के ऊपर बायोपिक बनने की बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जब तक किसी बायोपिक को आप ईमानदारी से न बना पाए तब तक नहीं बनाना चाहिए, और अगर ये बायोपिक ईमानदारी से बना दी गई तो शायद कपूर खानदान ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। चलिए बायोपिक न सही, लेकिन उनकी अमेजिंग फिल्में हैं जिसके अमेजिंग गाने हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: You better watch her shine।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

राज कपूर की वो साइड जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ राज कपूर। राज कपूर में वो सारे ऐप थे जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं। वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, औरतों के साथ फ्लर्ट करते थे और कई बार लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स, उनके रिलेशनशिप्स की बहुत सारी स्टोरीज बहुत सारे इंटरव्यूज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज में है। जैसे ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि जब राज कपूर वैजयंती माला जी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे तब उनकी मॉम यानी कि राज कपूर की वाइफ उन्हें यानी कि ऋषि कपूर को लेकर कहीं और रहने चली गई थी। इस रिलेशनशिप को वैजयंती माला ने कम्प्लीटली डिनाई किया और ये कहा कि ये संगम फिल्म को प्रमोट करने के लिए आरके फिल्म्स की पीआर टीम का स्टंट था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जिन भी रिश्तों में राज कपूर इन्वॉल्व हुए ये नरगिस जी के साथ ब्रेकअप के बाद के रीबाउंड रिलेशनशिप्स थे। वो मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं कि लिपटा है मेरे दिल से किसी राज की सूरत, वो शख्स के जिसको मेरा होना ही नहीं है। अजब रवायत है मोहब्बत की, उसे पाना भी नहीं है, उसे खोना भी नहीं है। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot. Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.
4: मुझे कुछ कहना है।
5: मुझे भी कुछ कहना है।
4: मुझे कुछ कहना है।
5: मुझे भी कुछ कहना है।
4: पहले तुम।
5: देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
4: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: राम तेरी गंगा मैली फिल्म का म्यूजिक कैसे बना था?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पर राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने ये बात शेयर की थी, सुनिए।
2: एक बार मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी पे, वहाँ रविंदर जैन जी तो गाना गा रहे थे, एक राधा एक मीरा, सुना वाह वाह वाह वाह, बोले किस तस्वीर का ये गाना है? बोले ये मेरा प्राइवेट गाना है, बोले ये गाना मेरा हो गया। वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, राज कपूर बोल रही है मुझे दे दो। अगले दिन ऐसा करो डब्बू, घर में बोल देना कि शाम को 5-7 लोग खाना खाएंगे तुम्हारे साथ और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे किसी को मिलना है और वो इस शहर में मिल सकते हैं। बोले ठीक है। मेमोरी क्या हो रहा है अपने घर में? एक तबला आया है, एक सितार आई है,
3: मुझे याद
2: है, सारंगी आई है, पापा आ रहे हैं ना, आने दो, हुआ है, साथ में रविंद्र जैन भी आ रहे थे,
3: मुझे ये दिन याद है।
2: तो मैंने नमरा चादर लगाओ, इधर तकिए वकिए लगाओ एंड सब बैठे, और दादू मेरा गाना बच्चों को सुना दो। तो वो गाना फिर से शुरू हो गया, तो गाना उनने फिर गाया, एक राधा एक मीरा। तो मुझसे बोले तेरे पास चेकबुक है? 25,000 का चेक बना के ले आ रविंद्र जैन के।
1: एंड दैट इज हाउ रविंद्र जैन को साइन किया गया था इस फिल्म के आइकॉनिक म्यूजिक के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है एक्टर नील नितिन मुकेश एक बार बचपन में राज कपूर की कोई फिल्म देख रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उसमें एक गाना आया तो नील की फैमिली ने उनको बताया कि ये गाना तुम्हारे दादू मुकेश गा रहे हैं। तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ये तो आपको पता है एक्टर नील नितिन मुकेश एक बार बचपन में राज कपूर की कोई फिल्म देख रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उसमें एक गाना आया तो नील की फैमिली ने उनको बताया कि ये गाना

लिए ही बनी हूँ, मेड इन हेवन। जब मुकेश जी का निधन हुआ था 1976 में, तो राज कपूर रो पड़े और बोले कि मैंने अपनी आवाज खो दी। 100 से भी ज्यादा गाने गाए थे मुकेश ने राज कपूर के लिए। पहला गाना जहां 1948 में आग फिल्म के लिए था, वहीं आखिरी गाना 1975 में धर्म करम मूवी के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। अच्छा, ये सारे गाने जो मुकेश जी ने राज कपूर साहब के लिए गाए, उनमें से सबसे प्यारा पता है कौन सा है? अनाड़ी फिल्म का ये वाला। सुनिए मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
4: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
5: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़े यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
4: हेलो,
5: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
4: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
5: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
4: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
5: हैं, मोबाइल पे
4: और क्या?
5: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
4: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
5: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
4: आपको बताना चाहिए था ना
5: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए।

0: या खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब।
0: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
0: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
0: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
2: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: याद कर रहे हैं हम उनको और बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ राज कपूर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज कपूर साहब को गुस्सा बहुत आता था, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फिल्म मेकर थे वो, खास करके जिन फिल्मों में उनके बच्चे काम कर रहे होते थे। एक बार एक इंटरव्यू में सुनिए ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म बॉबी के पहले सॉन्ग शूट के बारे में क्या शेयर किया था।
1: मेरी जिंदगी का पहला गाना था, मैं शायर तो नहीं हूं, so I was very excited. I got on the sets. I saw my father there and that little insecurity crept into me. Where is the dance director? My father has to call him saab. I said, saab, वो choreographer, dance director नहीं है। He said, choreographer, dance director की क्या जरूरत है? गाना कैसे गाऊंगा? कौन करेगा? खड़े रहो उधर। I said, मैं कैसे कर सकता हूँ? I've never done it. So do it for the first time, करो। I was looking around. He said, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई choreographer या dance director बुलाऊंगा, तुम नए हो, वो जो करेगा तुम उसकी नकल करोगे, और जो नकल होगी उस आदमी ने शशि कपूर, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी सबको वही करवाया होगा, और जब तुम करोगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो शशि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। तो मेक योर ओन आइडेंटिटी इन योर लाइफ, गो स्टैंड देयर, सिंग द सॉन्ग योरसेल्फ, देन ओनली यू विल लर्न।
0: ओ भाई भाई भाई, सुन के ही मुझे तो गूज़बम्स आ गए, डर लग गया एकदम से। बट दैट इज हाउ ही वॉज। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्च

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
5: पुरानी जींस विद चारू ओनली ऑन.

रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं द अदर साइड ऑफ राज कपूर साहब। और ये बात तो जग जाहिर है कि राज कपूर साहब और नरगिस जी बहुत लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप में थे। 21 साल की उम्र में राज कपूर नरगिस जी से तब मिले थे जब वो 16 साल की थी और उनकी इस मुलाकात को उन्होंने बॉबी फिल्म के सीन में रिक्रिएट किया था जब डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात होती है। उसी दौरान लेट 40s में दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और यहीं से उनकी दोस्ती, उनके बीच अट्रैक्शन की शुरुआत हुई। राज कपूर शादीशुदा थे तो भी नरगिस जी उनसे शादी करना चाहती थी। वेल, हमारे देश में मैरिज एक्ट 1955 में आया, उससे पहले एक मर्द का एक से ज्यादा शादियां करना बहुत ही नॉर्मल माना जाता था। राज कपूर नरगिस जी से कहते रहे कि वो उनसे शादी करेंगे लेकिन इवेंचुअली उन्होंने मना कर दिया और इस तरह से दिल टूटने के बाद नरगिस जी राज कपूर की जिंदगी से और आरके स्टूडियोज की फिल्मों से हमेशा के लिए चली गईं। इसके 2 साल बाद जब उन्होंने सुनील दत्त से शादी की तो ये बात राज कपूर बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी नाजुक सी मेल ईगो काफी हर्ट हो गई। वो शराब के नशे में धुत रहते थे, बदहवासी में सिगरेट से अपना हाथ जला लेते थे, किसी के भी कंधे पे सर रख कर रोना शुरू कर देते थे। काफी इंटरव्यूज में उन्होंने नरगिस जी का नाम डायरेक्टली ना लेते हुए उन्हें काफी बुरा भला कहा। अक्सर वो प्यार बहुत टॉक्सिक हो जाता है जिसको मंजिल नहीं मिलती है। ऐसा ही था नरगिस जी और राज कपूर साहब का प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

जो छूटा चांद न चमकेगा कभी।

0: मेरा नाम जोकर, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आज तो इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, मेनली इसकी लेंथ की वजह से। 4 घंटे से ऊपर की थी ये फिल्म। एक बार एक कॉमेडी टीवी शो में सुनिए राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म के बारे में क्या शेयर किया था।
1: बहुत प्यार से, लगन से बनाई थी फिल्म। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जोकर वाज डेफिनेटली राज कपूर्स फेवरेट पिक्चर। जब पिक्चर नहीं चली, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। हर पिक्चर की भी अपनी अपनी, जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी किस्मत होती है, बट जो बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो माँ बाप के फेवरेट हो जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है ये बोल के कि टुडे मेरा नाम जोकर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट पॉइंट। मेरा नाम जोकर इज अ बिग हिट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। जो तब नहीं चली थी, जब लोगों को समझ नहीं आई, आज बहुत समझ आती है और बहुत अच्छी लगती है उनको।
0: उस टाइम लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि बहुत बोर्ड थी उस टाइम के हिसाब से, मे बी वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। वेल, ये जो कॉमेडी को ट्रेजेडी के साथ मिला के जो सोशल मैसेजेस देते थे, यही शायद अमेजिंग क्राफ्ट था इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन का, राज कपूर का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

हरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: सही श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।

इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

पल पल में शामिल है।

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले।